एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 26 सितंबर सन 2026, प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण शुरू होता है।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर

0: जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

मनुष्य जीवन केवल सांस लेने, इच्छाओं की पूर्ति करने और संसार की दौड़ में आगे निकल जाने का नाम नहीं है। जीवन का एक और पक्ष है, अपने भीतर की यात्रा। यही यात्रा हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए मनुष्य धीरे धीरे यह समझने लगता है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह हमेशा स्थायी नहीं है। सुख आता है, दुख आता है, सफलता मिलती है, असफलता भी आती है, लेकिन इन सब के बीच हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो हमें हर परिस्थिति में संभाल सकता है, और वह है ईश्वर के प्रति विश्वास। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाएं, बल्कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग तो यही सिखाता है कि अपने परिवार, अपने काम और अपने संबंधों के प्रति ईमानदार रहें और हर कर्म को श्रद्धा के साथ करें। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला मनुष्य दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करता है। वह दूसरों में दोष देखने से पहले अपने भीतर झांकता है और धीरे धीरे उसके जीवन में एक परम शांति का अनुभव उतरने लगता है। चिंतन के बाद श्रोताओं, अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सच्ची भक्ति वही है जिसमें ईश्वर हमारे शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में दिखाई देने लगें।

कहते हैं मंदिर तक पहुंचना आसान है, लेकिन अपने भीतर बसे ईश्वर तक पहुंचना उतना सरल नहीं है। अपने भीतर की यात्रा के लिए मन को झुकाना पड़ता है, प्रभु के श्री चरणों में आत्मसमर्पण करना पड़ता है।

इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं से थोड़ी देर बाद सुबह ठीक 7:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनेगा लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। सुबह 9:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण रिले किया जाएगा। 9:50 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। सुबह 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां। 10:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और 11:05 पर लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे गूंज पहाड़ों की। जय हिंद गीत माला ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर 12:00 समय रहता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। श्रोताओं शाम 5:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से कुछ चुनिंदा भजन। 5:25 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा मंच। शाम 6:05 पर सुनना ना भूलिएगा सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजां ग्राइंदियां ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। और शाम 7:10 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम किसान वाणी रिले किया जाएगा। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनना ना भूलिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत। 8:45 पर समाचार संध्या रात 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और रात 9:15 पर कार्यक्रम हिम दर्शन आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम विज्ञान भारती रिले किया जाएगा। रात 10:00 डेली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई खेल ये विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किया जाएगा। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रमों की रूपरेखा में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 अंग्रेजी में समाचार, माफ कीजिएगा 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। मेक इन इंडिया अभियानस्य 12 वर्षे सम्पूर्णे सति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अस्याः योजनायाः अभूतपूर्वाः उपलब्धयः सम्प्रख्यापिताः। सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकं संदेशं यच्छन् प्रधानमन्त्रिणा इदत् प्रोक्तं यत् अभियानेनानेन भारते स्वदेशी निर्माणं वैदेशिक निवेशः निर्यातः च भूरिशः संप्रवर्धितः। तेन प्रोदीरितं यत् एषः परिवर्तन प्रवाहः सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षीक्रियते। आधारभूत संरचना नवोन्मेषयोः बलेन भारतस्य निरन्तर समृद्धिः एव मेक इन इंडिया इत्यभियानस्य मुख्यम् उद्देश्यमस्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिये मन की बात इति मासिक प्रसंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः राष्ट्रस्य जनैः सह आत्मीयं विचार विनिमयं विधास्यति। अष्टत्रिंशदुत्तर शततम प्रसंगस्य कार्यक्रमस्यास्य समग्र देशे दूरदर्शन आकाशवाणी जालपुटेन सह डिजिटल माध्यमेषु साक्षात् प्रसारणाय सर्व प्रबन्धः समनुष्ठितः। हिंदी वाचनानुपदमेव समस्त प्रादेशिक भाषाष्वपि अस्य रूपांतरणं आकाशवाणी केन्द्रैः प्रसारयिष्यते। उत्तर प्रदेश प्रशासनम् आयुष्मान योजना नियमानां उल्लंघनं कुर्वतां चिकित्सालयानां उद्दिश्य कठोरं कार्याचरणं विधास्यति। एतदर्थं राज्य स्वास्थ्य एजेंसी इति संस्था चतुः सदस्यीयं निरीक्षण दलम् अरचयत्। अवधेयं यत् इदं दलं पंजीकृत चिकित्सालयानां परीक्षणं प्रारभत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सम्प्राह यत् संयुक्त राष्ट्र संस्थायाः परिष्काराय पाठाधारित वार्ता अतीव आवश्यकी वर्तते। न्यूयॉर्क इत्यत्र संयुक्त राष्ट्र महासभायां भाषमाणः विदेश मंत्री अवोचत् यत् पाठम् अन्तरेण क्रियमाणा वार्ता केवलं समय यापनमेव अस्ति। परिष्कार विरोधिनः अस्याः संस्थायाः दुरुपयोगं कुर्वन्ति इत्यपि असौ स्पष्टम् उक्तवान्। जलसुरक्षा सर्वैः नागरिकैः प्रशासनेन उद्योगैः च सहभागितां विधाय एव साध्यते इति जलशक्ति मन्त्रिणा सी आर पाटिलेन सबलं प्रोक्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां नवम भारत अन्ताराष्ट्रिय जल सप्ताहस्य समापन सत्रे सम्भाषमाणेन मन्त्रिणा एतत् ख्यापितम् यत् जल संरक्षणाय जनसहभागिता अतीव आवश्यकी वर्तते। मन्त्रिणा सविशेषं प्रोदीरितं यत् वैश्विक सहयोगेन एव जल सम्बद्ध समस्यानां परिहारः सम्भविष्यति। जल संरक्षणं न हि केवलं एकस्य कर्तव्यं प्रत्युत प्रत्येकस्य उत्तरदायित्वम् इत्यपि असौ सबलं न्यगादीत्। उत्तर प्रदेशे प्रादुर्भूतया अतिवृष्ट्या जनजीवनं संजातम् अस्तव्यस्तम्। आसन्नां भीषण वृष्टिं विलोक्य प्रशासन पक्षतः बहुषु जनपदेषु पाठशालाः पिहिताः सन्ति। चक्रवात प्रभावेन राजधान्यां लखनऊ नगर्याम् अविरतं जलवृष्टिः प्रचलति। अत्रावधेयं यत् रविवासरं यावत् पूर्वी उत्तर प्रदेशे अतिभीषणा वृष्टिः विद्युत्पातः तीव्रसमीरश्च सम्भविष्यति इति सञ्चेतनाम् अयच्छत् ऋतुविज्ञानविभागः। नागोया एशियाई क्रीडासु भारतस्य पदकानां संख्या 23 सम्प्राप्ता। लक्ष्यभेदस्पर्धायां कमलजीतसुरुचि युग्मेन स्वर्णं गुलवीरसिंहेन च रजतपदकं प्रासाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः सी पी

0: राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभृतयः सर्वेभ्यः विजेत्री क्रीडकेभ्यः वर्धापन संदेशम् अयच्छन् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया टालने के समान होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर रैप्चर्स एंड रैम्पर्ट्स बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर मंत्री स्तरीय सत्र में यह बात कही। विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बरबुंडा की ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में श्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर अभियान के आरंभ होने का स्वागत किया है। इस अभियान की घोषणा 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के नाविकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान समुद्री सहयोग को मजबूत करता है और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की साझा प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज वर्षा से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। राहत आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी श्रृंखला में हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरोद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। आप सुनिए कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोता गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज के इस सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो दोस्त सचिता के साथ। श्रोतों, सुबह का ये वक्त अपने आप में बहुत ही खास होता है। दिन अभी पूरी तरह अपनी रफ्तार में आया नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारियों की दस्तक शुरू हो चुकी होती है। लेकिन आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस कुछ पल हमारे साथ बिताइए। इन पलों में बात होगी एक अच्छे विचार की, इतिहास के उन पन्नों की जिनसे आज का दिन जुड़ा है, और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की, और फिर हमारे आसपास के मौसम की जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए सुबह के इन खूबसूरत पलों को बातचीत और जानकारी से सजाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सुविचार की। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें निरंतरता हो तो वही छोटी शुरुआत एक दिन बड़ी उपलब्धि बन जाती है। इसीलिए शुरुआत कितनी छोटी है ये मत देखिए, बस कदम रुकने नहीं चाहिए। तो याद रखिए श्रोताओं, बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर दिन उठाया गया एक छोटा कदम भी मायने रखता है। तो श्रोताओं, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम सुबह सुहानी समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो आपको बता दें कि आज 26 सितंबर है और 1950 में इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता आज ही के दिन ग्रहण की थी। 1984 में यूनाइटेड किंगडम हांगकांग को चीन को सौंपने के लिए सहमत हुआ था। और आज ही के दिन साल 1998 को महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय मैच में अपना 18वां शतक लगाकर डेसमंड हेंस का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। और 2011 में दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना था जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रदान किया गया था आज ही के दिन। और अब बात करते हैं उन प्रसिद्ध व्यक्तियों की जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ। तो 1820 में 26 सितंबर को जन्म हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। वे भारत के महान समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। और साथ ही श्रोताओं, भारत के अमर सैनिक जिन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, 1921 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ और इनका नाम है सुबेदार जोगिंदर सिंह। और आपको बता दें श्रोताओं कि आज ही के दिन जन्म हुआ हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता देवानंद जी का। साल 1923 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि सुबह 8:30 पर कार्यक्रम गाने सुहाने में हम इनके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे और इन्हीं की फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही श्रोताओं, बात करें 1932 की तो आज ही के दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी जन्म हुआ जो कि प्रख्यात अर्थशास्त्री और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फिर से आपको सुनवा रहे हैं एक और प्यारा सा गीत। यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the range.
1: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh, valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh, valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, अब बात करते हैं कि कौन से खास दिन हैं जिन्हें आज हम मना रहे हैं। विश्व गर्भ निरोधक दिवस आज के दिन हम मना रहे हैं। ये दिन हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत साल 2007 में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। तब से हर साल 26 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों का आयोजन आज के दिन किया जाता है। इस दिन का श्रोता मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम जनता के बीच गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अनियोजित गर्भधारण को रोकना है, ताकि अनचाहे गर्भधारण को रोकने और परिवार नियोजन के सही तरीकों पर सटीक जानकारी पहुँचाई जा सके। हर साल श्रोताओं इस दिन को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम है बाधाएं हटे, विकल्प मिले, सुरक्षित कल के लिए गर्भ निरोधक साधनों तक सबकी पहुंच आज ही सुनिश्चित करें। तो श्रोताओं, ये थी विश्व गर्भ निरोधक दिवस की इस साल की थीम। एक और विशेष दिन आज के दिन हम मना रहे हैं। श्रोताओं, अगर एक बटन दबने से हमारी पूरी दुनिया, हमारा हंसता खेलता परिवार और ये खूबसूरत धरती पल भर में ही राख बन जाए, सुनने में डरावना सा लगता है ना, लेकिन ये सच है। आज यानी 26 सितंबर को हम मना रहे हैं परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ताकत बारूद के ढेर में नहीं बल्कि अमन और शांति में है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया को ये समझाना है कि परमाणु हथियार मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2013 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और साल 2014 से ये दिन हम हर साल मना रहे हैं। इसका लक्ष्य दुनिया के देशों को परमाणु हथियारों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए राजी करना है, क्योंकि दुनिया भर में 12,000 से ज़्यादा एटम बम यानी परमाणु बम आज भी मौजूद हैं, जो कि पूरी मानवता को कई बार तबाह कर सकते हैं। साल 2026 में संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य यही है कि हमें इन हथियारों की होड़ को रोकना होगा और इनके रखरखाव के लिए जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उन्हें इंसानों की बुनियादी ज़रूरतों पर लगाना होगा, क्योंकि असली तरक्की गोलियों या मिसाइलों में नहीं बल्कि खुशहाली से मापी जाती है। तो सुबह सुहानी कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हुए हैं श्रोताओं। कार्यक्रम में जानकारियां और भी हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर।

0: जी हाँ श्रोताओ, सुबह के 7:33 हो चुके हैं और आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: कार्यक्रम सुबह सुहानी में श्रोताओं, अब वक्त हो गया है जानने का कि क्या है आज की ताज़ा तरीन खबरें। श्रोताओं, भारतीय बहुसेना का बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 आज से जोधपुर और आसपास के एयरबेस पर शुरू हो गया है। देश की राजधानी के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आज से फिजियोथेरेपी का महाकुंभ शुरू हो रहा है। फिटनेस फॉर ऑल थीम पर आधारित ये 2 दिवसीय सम्मेलन स्वास्थ्य जगत के दिग्गजों को एक मंच पर लाएगा। देश भर में भाद्रपद पूर्णिमा आज से मनाई जा रही है, साथ ही आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। भाद्रपद पूर्णिमा पर पूर्णिमा श्राद्ध किया जा रहा है, जबकि मुख्य प्रतिपदा श्राद्ध कल से यानी 27 सितंबर से शुरू होगा। नई दिल्ली में चल रहे 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक का आयोजन आज अध्ययन भ्रमण के साथ आगे बढ़ेगा। इस आयोजन में जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के बीच जल प्रबंधन को लेकर विशेषज्ञों और विभिन्न संस्थाओं के बीच चर्चा हो रही है। एशियाई खेलों में आज भी भारतीय खिलाड़ी विभिन्न खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तीरंदाजी, शूटिंग, एथलेटिक्स और अन्य स्पर्धाओं में भारत की चुनौती जारी रहेगी। अब बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है और कल यानी 27 सितंबर को बारिश की तीव्रता और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें।

0: लेकिन आकाशवाणी धर्मशाला पर मनोरंजन का ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: सुबह के 7:40 हुए हैं श्रोताओ, हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम शुभ प्याग।

इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का शुभ प्याग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। अब सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नई श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
8: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो। ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई है। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
9: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली ओवर पास्ट 12 इयर्स। Heavy rains slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasised the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realised only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
1: Hame Atmanirbhar Bharat banana hai. Chunautiyan aayegi. Chunautiyon ko chunauti dene ka to sanskar lekar ke hum chale hain. Isliye hame har din ek nayi urja lekar seva bhav ke sath rashtra kalyan, rashtra seva ka kaam, jan seva se rashtra seva is mantra ko jeena hai. इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
11: During the interaction, these yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the yatris to maintain a diary and record their experiences during the yatra. In Uttar Pradesh, heavy and incessant rain has thrown life out of gear in many districts. Schools till 12th will remain closed in several districts due to heavy rain alert. Many districts, including state capital Lucknow, are witnessing heavy rain due to cyclonic conditions from last 24 hours. Normal life disrupted badly and road traffic also affected due to heavy rain. Many rain-related accidents have also been reported from different parts of the state. In eastern Uttar Pradesh, a warning of very heavy rainfall has been issued, along with heavy rainfall, thunder and lightning and strong winds. In western Uttar Pradesh as well, heavy rainfall and thunder and lightning are likely till 27th September. Heavy to very heavy rainfall is likely at several places in Uttarakhand today and tomorrow. The Meteorological Department has issued red and orange alerts for several districts. Chief Minister Pushkar Singh Dhami has appealed to people and tourists to avoid unnecessary travel during this period. The Char Dham Yatra will continue for now, but pilgrims may be stopped at the nearest holding area in case of heavy rainfall. More from our correspondent.
4: According to the Met Department, heavy to very heavy rainfall is likely at some places in Bageshwar, Nainital, Pithoragarh, Champawat and Udham Singh Nagar today, with extremely heavy rainfall at isolated places. A red alert has been issued for these districts. An orange alert has also been issued for Dehradun, Pauri, Chamoli, Rudraprayag and Almora, where heavy to very heavy rainfall is expected. Heavy rainfall is also likely at isolated places in other parts of the state. For tomorrow, a red alert has been issued for Dehradun, Tehri, Haridwar and Pauri for heavy to very heavy rainfall, with extremely heavy rainfall at some places. Heavy to very heavy rainfall is also likely in Nainital, Uttarkashi, Chamoli and Rudraprayag. The Met Department has also forecasted snowfall at some places at an altitude of 4,000 meters and above in the state. Chief Minister Pushkar Singh Dhami has appealed to residents and tourists to follow the weather advisories and avoid unnecessary travel during the red alert. He has directed all district magistrates and concerned departments to remain vigilant and ensure that relief and rescue arrangements are in place. Meanwhile, the Chardham Yatra in Garhwal region will continue for now. However, in case of heavy rainfall, pilgrims will be stopped at the nearest holding areas for their safety. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
11: The Chhattisgarh government has declared a holiday today for all schools in the state due to continuous rain over the past 2 days. Heavy rain has caused the water levels in several rivers, including the Indravati, Mahanadi and Shivnath, to rise. Low-lying areas of several cities and towns are also facing waterlogging. Chief Minister Vishnu Deo Sai has directed the district collectors to remain alert and carry out relief and rescue work in view of the flood and waterlogging situation. He has asked the authorities to warn people in time if water level rises or there is danger of floods. People should be moved to safer places immediately if needed. The depression over North Chhattisgarh and adjoining areas continues to influence weather over Odisha, with heavy rain reported from several parts of the state. The Baitarni and Jalka River are flowing above danger levels, inundating low-lying areas and triggering flood concerns in northern Odisha. Landslides and waterlogging have disrupted road communication, while schools have been closed in several districts as a precaution. More from our correspondent.
12: In Odisha, the depression has weakened but continues to bring heavy rain to several parts of the state. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall at some places, particularly over northern and western districts today. The Baitarni is flowing above the danger mark at Akkuapada, while Jalaka has also crossed the danger level at Mathani in Baleswar district. Low-lying areas have been inundated and flood alerts issued in vulnerable areas. Landslides and soil slips have disrupted road communication in parts of southern Odisha, while several areas have reported waterlogging and road blockages. Schools are closed in Cuttack, Malkangiri, Nabarangpur and Nuapada, besides 399 schools in 7 blocks of Bhadrak district. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
11: This is Akashwani giving you the news.
6: For news and updates anytime, anywhere, follow us on X at AIR News Alerts and on Facebook at All India Radio News.
11: Welcome back to Morning News on Akashwani. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, will inaugurate the country's first victim rights centre in Patna today. He will also launch several other facilities on the occasion. A report.
13: The first of its kind victim rights centre in the country is established on the premises of the Bihar State Legal Services Authority. The centre will provide legal rights and essential assistance under one roof to victims of various crimes, including invisible victims. It will provide psychological support to victims along with counselling and other facilities. The centre is being launched in Patna district as a one-year pilot project. It will subsequently be extended to all districts of the state. A transgender helpline will also be launched, while a fleet of multi-utility vehicle will be flagged off on the occasion. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
11: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you a closer look at how government is working for every section of society with a steadfast commitment to service. The new labour codes are a testament to this commitment.
14: These codes consolidate various existing laws into a modern framework designed to foster clarity, stability and equity within the workforce. According to the Ministry of Labour and Employment, 29 central laws have been subsumed into 4 codes under these reforms. The Code on Wages universalizes minimum wages and assures timely payment, while the Industrial Relations Code simplifies dispute resolution and enhances flexibility in hiring. Meanwhile, the Code on Social Security extends coverage to gig workers, platform workers and the unorganized sector. Similarly, the Occupational Safety, Health and Working Condition Code improves workplace safety and welfare standards. In Chandigarh Tri-City Building Kamgar Union's President Rampreet Sharma said that the new labor laws are in the interest of workers.
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। जो नया कोड है उसमें सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न प्रावधानों से अनुपालन की जटिलता कम करने की कोशिश की गई है और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर व्यवस्था भी सिर्फ निरीक्षण की बजाय मार्गदर्शन की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव है। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है, जबकि प्रति सप्ताह 48 घंटा की सीमा में ओवरटाइम को दोगुना करने का प्रावधान भी है, जिसमें प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के अनुसार बेहतर मैन पावर प्लानिंग संभव हो सकती है।
14: दीज फोर लेबर कोड्स एम टू मॉडर्नाइज इंडियाज लेबर इकोसिस्टम, ब्रिंगिंग बोथ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स अंडर अ यूनिफाइड सेट ऑफ रूल्स दैट सिंप्लीफाई कंप्लायंस, एंश्योर सेफ्टी एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्कफोर्स मैनेजमेंट। फॉर वर्कर्स दिस एंश्योर्स रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी, सेफ वर्कप्लेसेस एंड ब्रॉडर एक्सेस टू बेनिफिट्स। फॉर एंटरप्राइजेस इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस एंड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी न्यूज, चंडीगढ़।
11: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York.
15: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier, MV Cape Dow, was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea, and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
11: In sports, Indian marathon runner Savan Barwal created history at the Asian Games 2026 by winning a silver medal in the men's marathon event, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline. Barwal clocked 2 hours, 11 minutes and 37 seconds to register his personal best and set a new national record in the men's marathon final. He finished behind Japan's Yamashita, who claimed the gold medal after pulling ahead in the closing stages of the race. In FIDE Chess Olympiad, reigning world classical chess champion D. Gukesh secured a clutch win to help India beat overnight joint topper Germany 2.5 to 1.5 in the ninth round of the men's open section, moving up to second position in the standings. With this win, India rode back into title contention as they are in good position to challenge table toppers Uzbekistan for the title. In the women's section, B. Savita Shree's incredible run of 7 successive wins came to an end, but remained unbeaten after a draw against Karimova Guldona of Uzbekistan on the top table. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
16: Thank you, Anuja. The Times of India highlights Prime Minister Modi's virtual interaction with Seva Yatris from Varanasi to Vadnagar to blend social reform with political work rather than focusing only on vote banks. Key trade pacts in mind, Delhi looks at multi-nation visit by PM Modi in December. Destinations may include the US, Canada and at least 2 European countries, writes the Indian Express. The Statesman writes AIIMS Delhi records over 50 lakh OPD visits, nearly 3 lakh surgeries in a year. A headline in the Economic Times states, rupee recovers as large public sector banks sell dollars. And finally, Hindustan Times and all other dailies carry the news of India ending its wait for gold in shooting. The headline says, shooters strike gold. India scales new heights with its first pole vault medal. And with that, it's back to you, Anuja.
11: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says gap between cities and villages in India has narrowed significantly over past 12 years. Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in ninth round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
17: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने सुहाने। कार्यक्रम गाने सुहाने सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता। श्रोताओ, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है, चलिए हम आपको बताएंगे। श्रोताओ, सिनेमा की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते हैं और अपने अभिनय के एक दौर की पहचान बन जाते हैं। कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जिनका अंदाज समय के साथ पुराना नहीं पड़ता। हिंदी सिनेमा के ऐसे ही एक सदाबहार सितारे थे देवानंद। आज 26 सितंबर को हम उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 26 सितंबर 1923 को इनका जन्म हुआ था। तो श्रोताओ, हो जाइए तैयार हमारे साथ इस कार्यक्रम में चलने के लिए। अब से लेकर ठीक 9:10 तक आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और हम बात करेंगे देवानंद साहब के बारे में और साथ ही इनकी फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत भी आपको सुनवाएंगे। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी हाँ श्रोताओ, गाने सुहाने कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं देवानंद साहब जी की, क्योंकि आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। देवानंद का फिल्मों की ओर रुझान बचपन से ही था। मुंबई आने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना सफ़र शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व ने जल्द ही फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। साल 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की। इसके बाद 1948 में आई फिल्म जिद्दी ने उनके करियर को एक नई दिशा दी। इसके बाद देवानंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवानंद ने अपने भाई चेतन आनंद और विजय आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। इस बैनर के माध्यम से उन्होंने ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया जिनमें मनोरंजन के साथ साथ नई सोच और आधुनिकता भी दिखाई देती थी।

0: कार्यक्रम गाने सुहाने समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
2: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
2: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
1: Nexa. नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
2: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
2: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
1: Nexa.
0: कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के गाने सुहाने कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं देवानंद साहब जी की। देवानंद की लोकप्रियता केवल उनके अभिनय तक ही सीमित नहीं थी। उनकी हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का अंदाज, गर्दन झुकाकर बोलने का खास तरीका और पर्दे पर उनकी ऊर्जा ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया। उनके प्रशंसकों के लिए देव साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक स्टाइल और व्यक्तित्व थे। उनके बारे में खास बात ये भी रही कि उम्र बढ़ने के साथ भी उन्होंने खुद को किसी एक दौर में सीमित नहीं किया। वह लगातार काम करते रहे, नई कहानियों और नए विषयों के साथ प्रयोग करते रहे। देवानंद की फिल्मों की चर्चा उनके गीतों के बिना अधूरी सी लगती है। तो अब एक बार फिर से आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, देवानंद साहब की फिल्मों में ऐसे अनेक गीत रहे जो आज भी श्रोताओं की पसंद बने हुए हैं। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, हेमंत कुमार और अन्य महान गायकों की आवाज़ में उनके ऊपर फिल्माए गए गीतों ने हिंदी फिल्म संगीत को यादगार बना दिया।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। टीएनसी अप्लाई।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
6: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। टीएनसी अप्लाई।
7: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं देवानंद साहब जी को। श्रोतो, देवानंद जी की प्रेम कहानी भी बहुत ही लोकप्रिय रही थी। एक तरफ हिंदी सिनेमा का चमकता हुआ सितारा जिसके सामने पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्यार जिसे वह चाहकर भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सके। शायद इसी वजह से देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। आज जब हम देवानंद की फिल्मों, उनके गीतों और उनके सदाबहार अंदाज के लिए उन्हें याद करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी का ये अध्याय भी याद आता है। देवानंद की फिल्मी सफ़र दशकों तक श्रोताओं यूं ही चलता रहा, और उनका नाम हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली सितारों में दर्ज होता रहा।

श्रोताओ, देवानंद जी के भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए अनेक सम्मान उन्हें प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। 3 दिसंबर सन 2011 को देवानंद साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका फिल्मी सफर समाप्त नहीं हुआ। उनकी फिल्में आज भी देखी जाती हैं, उनके गीत आज भी सुने जाते हैं और उनका अंदाज आज भी सिनेमा प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही तो किसी कलाकार की असली विरासत होती है। कलाकार चला जाता है, लेकिन उसकी कला लोगों के बीच हमेशा जीवित रहती है।

0: नजराना।
1: तो श्रोताओं, आज देवानंद की जयंती पर हम उन्हें याद करते हुए यही कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा के इस सितारे ने सिर्फ फिल्में ही नहीं की बल्कि अपने समय की एक खास सिनेमाई संस्कृति को भी जन्म दिया। उनकी फिल्मों में रोमांस था, संगीत था, रोमांच था और जिंदगी को अपने अंदाज में जीने का संदेश भी।
2: बैठ जा।

तो श्रोताओं, आज के गाने सुहाने कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमने देवानंद साहब जी को याद किया उनकी जन्म जयंती पर। उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया सुनील शर्मा ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जतेंद्र पाल सिंह। और अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को ये कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं फरत नाज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार।
1: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल जगत के जाने माने विश्लेषक श्री जी राजा रमन जी। नमस्कार राजा रमन जी।
3: शुक्रिया फरहत।
1: तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने इसरो को साइकिल पर रॉकेट ले जाने के दौर से देखा है, आज हम चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
2: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं, और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है
1: जी।
2: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारे सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था
1: जी सर।
2: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
1: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजा रमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा। तो ये बदलाव कैसे आया?
3: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया है। पहले नहीं था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं, और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
1: सर ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ, फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है, और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या गाँव के बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
3: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है, पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है, और युवाओं को ये समझ आया है कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
1: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं, आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
2: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल के अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा, वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है, और वो अगर कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है, और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई, तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से ही पता है, क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट सिनकॉम 3 1963 में भेजा था, उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके
1: जी।
2: और उसके बाद जो प्रगति हुई, जो हमने देखा कि 1982 में इनसैट 1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा, लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। ये कैसे होता है? तो इसके लिए जो दूरदर्शन के जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है। ये उपग्रह का उपयोग करके हम ये सब काम कर सकते हैं।
1: जी, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि खेल में भी एक सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी एक सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है। तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजा रमन जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा अनुशासन चाहिए?
3: बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में, जैसे अब मुझे लगता है डॉक्टर कले और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं। वहां आप देखिए, एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले। ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा, गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था। एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में दो मेडल हासिल कर सकती है, मनु बाकर की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ। अब हमारी सोच शायद छोटी थी, अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला है और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का एक मौका मिला है भारत को। और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो, ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं, खास करके हमारे टॉप एथलीट।
1: राजीरमन जी, पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं।
3: वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए, पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है, और कई ऐसे एथलीट हैं, शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम, उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाती है और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है, शी इज वेरी फेमस एथलीट। ऐसे बहुत सारे एथलीट है जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं। पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था, अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है। ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले 10-12 साल में, और हमारे खिलाड़ी, विकलांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
1: बिल्कुल राजा रमन जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं।
4: श्रोताओं, आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन श्रोताओं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है। इसके लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान, जीवन रक्षक प्रणाली, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है। भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है। इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी। इसके बाद 2 और अनक्रूड मिशन की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है। श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का रास्ता भी खोलता है। अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है, और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी गई। उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है, देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
5: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास, और प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मिशन फेल हुए, जैसे चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग, तो उस रात इसरो में क्या माहौल था और फेल होना भी युवाओं के लिए क्या सबक है?
2: एक तो जब हम हाथ में काम लेते हैं तो पहले से पता होता है कि कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका अभ्यास करके इसमें क्या सुझाव करना पड़ेगा, तो यही सोच रख के हम काम करते हैं कि कुछ भी जो फेल हो जाए तो ठीक है, हम आगे जाके इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जब मिशन होता है, इतनी बड़ी टीम जब काम करती है, कभी कुछ गलत हो सकता है, और जो गलत हो जाए तो आगे जाके उसको ठीक करके हम फिर से दोबारा ऐसा ही प्रयत्न करेंगे, ये भावना मन में रख के ही हम आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
5: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियाँ क्या है?
2: पहले से ही हम देख रहे थे कि जब हमने काम हाथ में लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम करना है वो, और तभी से 40 साल हो गए अभी, सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती है। आज जो देखे तो मुझे लगता है कि 75% काम जो है वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है, और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नहीं तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काईरूट का जो Vikram-1 जो उन्होंने लॉन्च किया
5: जी,
2: बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है, और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी तरह से, उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था, तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा, और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
5: और अब राजा रमन जी, आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की, तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
3: इससे पहले मैं डॉक्टर काले ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से सीख लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेलें और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाएं, और इसरो ने वो कर दिखाया।
5: हाँ, और पुरानी कहावत भी है, हार में ही जीत है।
3: बिल्कुल है। और अगर हम फिट इंडिया की अभी बात करते हैं, हाँ। तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो। और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है। एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही और अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए।
5: जी अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
3: वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए, जो छोटे शहर से आते हैं या गांव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है और वो कर दिखाते हैं। शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं, उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है। हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है कि वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गाँव को सुधारना चाहते हैं।
5: जी अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के दो युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
2: उसकी टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो, और जब उसको लॉन्च किया विक्रम वन को, सतीश स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था। जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है।
5: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें तो आप भारत को कहाँ देखना चाहेंगे?
2: चंद्रमा पे जाकर वहाँ से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी।
5: वापस आना और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना। राजरमन जी,
3: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं, और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें, उनमें से चैंपियंस पैदा करें, शिक्षक जो कोचेस हैं, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है।
5: तो राजरमन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, अगर ओलंपिक भारत में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा हो?
3: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है। हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो स्टेडियम बनाने का लेबर फोर्स हो, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं इसमें, और युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। खिलाड़ी के लिए तो है ही, लेकिन और भी युवा जुड़ सकते हैं खेल के माध्यम से और उनका भला हो जाएगा।
5: और अब वापस लौटते हैं और अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है अंतरिक्ष में आगे के लिए, प्रमोद जी क्या होना चाहिए?
2: जहाँ भी वो सीखते हैं ये बच्चे, उनको पहले से ही थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि छोटा रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सैटेलाइट किस तरीके से बना सकते हैं, और उसमें जो टीम जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है। मैंने यहाँ पुणे में देखा था, एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था स्वयं। और रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया पुणे में, तो मैंने उनको मदद की थी और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी, ये काम वो कर दिखा सकते हैं। वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रही थी, क्योंकि तो स्टूडेंट्स थे, उनके 3-4 साल प्रयोजन के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था। और इस तरीके से का काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है, ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए।
5: प्रमोद जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, इस किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुंचाया?
2: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स अमेरिका से फ्रांस से आए थे। उसके बाद में जब हमने अपना खुद का ईंधन जो है वो तैयार किया, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार हुआ, तो वो प्रोपेलेंट जो है उसी के लेकर हम आगे जाकर काम कर सके। उसके बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में काम किया, उसके बाद में जाकर क्रायोजेनिक्स में भी काम किया। तो ये जो आत्मनिर्भर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिर्फ कोई इंटरनेट से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन ये आगे जाकर ये हमें खुद को करना पड़ता है, और ये जो खुद को करना पड़ता है ये देखकर हम आगे चले गए हैं।
5: खुद को देखकर करना पड़ता है राजा रमन जी, तो अगर आप खेल की हम बात करें तो इसमें भी हम वही चीज अपनाना चाहेंगे कि सीमित संसाधन उस समय हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं, तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी कुछ शूटर्स के साथ जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है, वो सूट पहले आप इंपोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आ गया ये। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
5: तो एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए?
3: 1970 में कमलजीत संधू पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए, और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारे महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो एक कोशिश ये है, अगर आप खेलो इंडिया की बात करें उसके अंदर अस्मिता लीग करके एक शुरू हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये हमारे समझ में आया है कि महिला हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना है अस्मिता, वहां से खेलो इंडिया में चलते हैं, खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में आते हैं, बहुत सारे अभी रास्ते खुले हैं हमारे महिलाओं के लिए और एक इज्जत मिलने लगा है सोसाइटी में जब वो खेलते हैं और फिर भारत का नाम रोशन करते हैं, दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट मोर, पहले जैसा नहीं, लेकिन अच्छी बातें हो रही है भारत के अंदर और मुझे लगता है कि महिला ही हमें बहुत आगे और लेके जाएंगे।
5: अगर खेल की हम बात करते हैं तो उसमें डोपिंग और एज फ्रॉड जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, तो युवाओं का जो करियर पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस चीज को कैसे रोका जाए?
3: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है, अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है। एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है, और इसमें चाहिए जो पेरेंट्स है, जो स्कूल के अध्यापक है, जो कोचेस है, इनको चाहिए अनुशासित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है। अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम।
5: राजा रमन जी, आपने अनुशासन की बात की तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद जरूरी है, तो अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने को मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
2: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे उनसे मैंने एक देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट चेंज करते थे, ये हमें सीखना मिला उनके पास से। और एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे साथ में काम करने के लिए आगे 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई, बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज द ओनली एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशंस, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे। और आगे जाकर हम जब एसएलवी का काम करना चालू कर दिया तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं, वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांतता पूर्वक, कितनी सभ्यता पूर्वक वो जो काम करते थे वो सीखने को मिला। तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर से नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये। और इसी लिए जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देता है।
5: जी, टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजा रमन जी, हर चीज के लिए।
3: बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी आजकल टीम आ गया है। एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है। युवाओं को भी समझ आया कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम। और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है, और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना भी आप अच्छा कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी हैं, उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाए और बेहतरी हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप बेहतर हो सकते हैं। ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगे रहे, परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाएं कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते।
5: और अगर बात अब 2047 की करते हैं तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए। जी प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए।
2: जब मैंने पहले पढ़ा था गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके।
5: जी राजा रमन जी,
3: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा। और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
5: तो हमने जैसे जाना कि खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहां पर, और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
2: ये युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते है, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है इसकी थोड़ी तो उनको जो कल्पना हो, और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनके फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।
5: प्रमोद जी, देखा जाए तो आजकल के युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
2: हमने जब इनसेट वन लॉन्च किया था तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनसेट वन बी का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतनी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है, यही मैं तो देख सकता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते। तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है, ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
5: जी राजा रमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
3: अगर डिप्रेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर लें, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है। बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को, खेलना होता है। जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी, और दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर रहेगी।
5: राजनमन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है, तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने तक एक युवा खिलाड़ी को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
3: बहुत जरूरी है। पहले मुझे याद है फरज जी, मैं बहुत ही युवा था तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं, 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है, सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक मुहिम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो, पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2,00,000 बच्चों के असेसमेंट्स किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द क्लू कि हम कौन से स्पोर्ट में और अच्छा कर सकते हैं। 7 या 8 खेल हैं जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है। वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं। लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिम्नास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का बला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो then we will find the solutions to all our problems.
5: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा, मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। और श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े।
2: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का सेल्फ स्टडी का एक रेजिम बनाए और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो, तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी तो उनकी शिक्षा जो है वो कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती, उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक रेजिम बनाना चाहिए।
5: राजनमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है?
3: बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी है तो यू कैन ज्वाइन इन और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें और अपना जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें। वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
5: बिल्कुल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में बदलें और कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
2: थैंक यू।
0: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज़।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 हुए हैं। अब सुनिए देश।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:50 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सेवा व सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सार्वजनिक परिवहन सुविधा को मजबूत करने पर बल दे रही है राज्य सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बनी मददगार। ऊना जिला में लगभग 96,000 किसान लाभान्वित। और शिमला के गेटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, 96 शॉर्ट फिल्में होंगी प्रदर्शित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में शहरों और गांवों के बीच दूरी में कमी आई है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और

0: सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं, इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कंसा मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व अस्पताल नेरचौक में 3 टेस्ला MRI मशीन और टर्शरी केयर कैंसर सेंटर का शुभारंभ और पैट सिटी स्कैन मशीन के अधोसंरचना विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों से संवाद भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन सुविधा को मजबूत करने और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार के माध्यम से स्वच्छ व बेहतर परिवहन को बढ़ावा दे रही है। शिमला में HRTC के निदेशक मंडल की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को 250 नई डीजल बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी बसों को चरणबद्ध ढंग से हटाया जाएगा और उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी ताकि निगम के बेड़े को और आधुनिक बनाया जा सके। अग्निहोत्री ने तकनीकी समिति को निगम के बेड़े में शामिल की जाने वाली नई इलेक्ट्रिक बसों के प्रोटोटाइप को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बसों की बैटरी क्षमता 350 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए ताकि इनका संचालन लंबे रूटों पर भी किया जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदेश में किसानों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। ऊना जिला में करीब 96,000 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
2: ऊना जिला के कार्यकारी राजस्व अधिकारी विपिन कुमार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसानों से योजना की आगामी किस्तों का बिना किसी रुकावट से लाभ प्राप्त करने के लिए अतिशीघ्र सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने की अपील की है। लंबित मामलों में किसान अपनी भूमि की सीडिंग हेतु पटवारी द्वारा सत्यापित नकल जमाबंदी तहसील कार्यालय में जमा करवाएं, राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार सीडिंग करवाएं और डिजिटल कृषि सेवा एवं EKYC के लिए नजदीकी लोकमित्र केंद्र से संपर्क करें। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश।
0: राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र होली स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के नवनिर्मित छात्रावास भवन के उद्घाटन अवसर पर कल उन्होंने ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इन विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकलव्य विद्यालय होली के भवन का शेष निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
4: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
5: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
4: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय ये फिल्म महोत्सव विश्व और भारतीय सिनेमा के उत्सव मनाते हुए देश विदेश के फिल्मकारों, अभिनेताओं, लेखकों और सिनेमा प्रेमियों को एक मंच पर लेकर आया है। महोत्सव का आयोजन

0: दिन शिमला में एनएफडीसी, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और प्रदेश के भाषा व संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इस महोत्सव में 33 देशों और देश के 15 राज्यों की 96 शॉर्ट फिल्में प्रदर्शित होंगी। महोत्सव के निदेशक पुष्पराज ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला का उद्देश्य देश व दुनिया भर के स्वतंत्र फिल्मकारों को एक मंच प्रदान करना है। महोत्सव में विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और सिनेमा परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में, एनिमेशन फिल्में दिखाई जाएंगी।
1: इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला, ये हमारा 12th एडिशन है और हम इसमें फीचर, शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, इस तरह की फिल्म्स जो होती हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनाते हैं, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म रहता है। देश के विभिन्न राज्यों से और दूसरी कंट्रीज से भी फिल्म मेकर आए हैं। मैं चाहूँगा शिमला में और जो आसपास के बाकी राज्यों से आना चाहते हैं, एक ऑथेंटिक सिनेमा, रीजनल सिनेमा और इंटरनेशनल सिनेमा देखना चाहते हैं, तो ज़रूर गेटी थिएटर में आए। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ये फिल्मों का स्क्रीनिंग होगी।
0: विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कुल्लू जिले में मनाली एक्सपो 2026 का कल शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये आयोजन उत्तर भारत का प्रमुख बिजनेस टू बिजनेस और इंडस्ट्री एक्सपो है। एक्सपो में देश भर से 100 से अधिक कंपनियां, ब्रांड्स, एमएसएमई और स्टार्टअप्स भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि मनाली एक्सपो स्थानीय युवाओं और कारोबारियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा।
2: मनाली एक्सपो 2.0 पूरे इलाके के लिए, रीजन के लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपोजर भी है और साथ में जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स लोग लेके आ रहे हैं। ज्यादातर हमारे होटेलियर्स जितने हैं, उन्हें इन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, हमारे मनाली में ही मिले और कॉम्पिटेटिव रेट्स पे मिले। तो मैं समझता हूँ हर एक चीज को एक साथ में आगे ले जाने का काम इस तरह की एक्सपोज करती है।
0: अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, केंद्र सरकार की खोटी नीयत से हो रहे पेपर लीक। दैनिक जागरण व पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है, प्राकृतिक संपदा और बहता पानी हिमाचल को बनाएंगे आत्मनिर्भर। जबकि दैनिक भास्कर लिखता है, पानी बीबीएमबी शानन से मजबूत होगी प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अमर उजाला की एक खबर है, एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 1000 नई ई बसें। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिम ई पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सेवा व सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सार्वजनिक परिवहन सुविधा को मजबूत करने पर बल दे रही है राज्य सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बनी मददगार। ऊना जिला में लगभग 96,000 किसान लाभान्वित। और शिमला के गेटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, 96 शॉर्ट फिल्में होंगी प्रदर्शित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अनाड़ी फिल्म का ये गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुस्कान फिल्म से। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने।

श्रोता, इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस गीत को आप सुन रहे हैं बुलंदी फिल्म से।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
1: Nexa.
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
1: Nexa.
4: श्रोतो, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नगीना फिल्म से।

शोधो नाम फिल्म का गीत इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार है आनंद बख्शी।

श्रोतो, अभी आप इंजॉय कर रहे थे गीतों का कारवा आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं हिमाचली गीत पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, धीरे शर्मा की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला हिमाचली गीत।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं पहाड़ी गीत, पहाड़ों के सुर। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत, हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मानसिंह की आवाज़ में।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ज्वाला प्रसाद शर्मा की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार लेके जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 सितंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कंसा मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाद में वे श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व अस्पताल नेरचौक में 3 टेस्ला MRI मशीन और टर्शरी केयर कैंसर सेंटर का शुभारंभ और पैट सीटी स्कैन मशीन के अधोसंरचना विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदेश में किसानों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। ऊना जिला में करीब 96,000 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
1: ऊना जिला के कार्यकारी राजस्व अधिकारी विपिन कुमार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसानों से योजना की आगामी किस्तों का बिना किसी रुकावट से लाभ प्राप्त करने के लिए अतिशीघ्र सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने की अपील की है। लंबित मामलों में किसान अपनी भूमि की सीडिंग हेतु पटवारी द्वारा सत्यापित नकल जमाबंदी तहसील कार्यालय में जमा करवाएं, राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार सीडिंग करवाएं और डिजिटल कृषि सेवा एवं EKYC के लिए नजदीकी लोकमित्र केंद्र से संपर्क करें। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश।
0: चंबा जिले से संबंध रखने वाली एथलीट सीमा कुमारी ने जापान में आयोजित एशियाई खेलों में कांस्य पदक हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें बधाई दी है। सीमा कुमारी ने एशियाई खेलों में 10,000 मीटर दौड़ की स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। सीमा ने उन्हें बधाई देने के लिए सभी देशवासियों का आभार जताया है।
2: मैं सारे भारतवासियों का तह दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बहुत ज्यादा मान और सम्मान दिया। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि 28 सितंबर को मैं 5000 मीटर में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। उस इवेंट में भी काफी टफ लाइनअप है, लेकिन उसमें भी मैं अपने देश को मेडल दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी।
0: शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय ये फिल्म महोत्सव विश्व और भारतीय सिनेमा का उत्सव मनाते हुए देश विदेश के फिल्मकारों, अभिनेताओं, लेखकों और सिनेमा प्रेमियों को एक मंच पर लेकर आया है। महोत्सव का आयोजन शिमला में NFDC, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और प्रदेश के भाषा व संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इस महोत्सव में 33 देशों और देश के 15 राज्यों की 96 शॉर्ट फिल्में प्रदर्शित होंगी। महोत्सव के निदेशक पुष्पराज ठाकुर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला का उद्देश्य देश व दुनिया भर के स्वतंत्र फिल्मकारों को एक मंच प्रदान करना है।
3: इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला, ये हमारा 12th एडिशन है और हम इसमें फीचर, शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, इस तरह की फिल्म्स जो होती हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनाते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म रहता है। देश के विभिन्न राज्यों से और दूसरी कंट्रीज से भी फिल्म मेकर आए हैं। मैं चाहूंगा शिमला में और जो आसपास के बाकी राज्यों से आना चाहते हैं, एक ऑथेंटिक सिनेमा, रीजनल सिनेमा और इंटरनेशनल सिनेमा देखना चाहते हैं, तो जरूर गेटी थिएटर में आए। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ये फिल्मों का स्क्रीनिंग होगी।
0: मणिमहेश यात्रा के दौरान राज्य पथ परिवहन निगम चंबा द्वारा यात्रियों के लिए विशेष बसों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। चंबा में निगम के मंडलीय प्रबंधक शुगल सिंह ने बताया कि इससे निगम को इस वर्ष 24,48,000 रुपए की आय प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा प्रदेश की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक है जिसमें देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में HRTC की भूमिका यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण रहती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं गूंज पहाड़ों की।

शोधो इस समय गूंज रही है पहाड़ों की गूंज, तो आइए फिर से थोड़ा सा इस गूंज की ओर बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं दीपक कुमार और अशोक कुमार की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, अंजना और रीता देवी की आवाज में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला हिमाचली।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे गूंज पहाड़ों की आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 11:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं जय हिंद गीतमाला।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं जय हिंद गीतमाला आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं चक दे इंडिया फिल्म से।

वीर जारा फिल्म का देशभक्ति गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र। इस गीत को गाया है गुरदास मान, लता मंगेशकर और उदित नारायण व साथियों ने।

श्रोता, इस समय आप लुत्फ उठा रहे हैं देशभक्ति गीतों का, जय हिंद गीतमाला का, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता।

सैनिक भाइयों, अभी आपने कयामत फिल्म का ये गीत सुना अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लव से। एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजें हैं।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए सभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सलामी से।

सैनिक भाइयों, अभी आपने ये गीत सुना जिसे गाया था कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों ने, और इस गीत को हमने लिया था फिल्म आ अब लौट चले से।

सैनिक भाइयों, सात रंग के सपने इस फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को, बहनों को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम में स्वागत है। सखी, आज के कार्यक्रम में हाजिर हो गई है आपकी सखी सुमन, लेकर ढेर सारी जानकारियां और प्यारे प्यारे गीत। तो सखियों, बात करते हैं आज के दिन की। आज है शनिवार और शनिवार को हम माँ की पाठशाला पर बातचीत करते हैं। जी हाँ, माँ की पाठशाला कोई स्कूल का नाम नहीं है, हम सभी जानती हैं, बल्कि घर और परिवार में माँ द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले संस्कार, व्यवहारिक ज्ञान, अनुशासन और जीवन मूल्य के शिक्षा का सुंदर सा विचार है। बच्चे की पहली शिक्षिका अक्सर उसकी माँ होती है और घर उसकी पहली पाठशाला होती है। बहुत कुछ जो है माँ बच्चे को उसमें सिखाती है, बोलना, उठना, चलना, बैठना, व्यवहार करना, अच्छे संस्कार देना, ईमानदारी सिखाना, अनुशासन में रहना, सहानुभूति और सहयोग की बातचीत बताना, समानता, स्वच्छता, जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं सखियों जो माँ अपने बच्चे को सिखाती हैं। बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना और अच्छे से उनसे बातचीत करना, हमेशा सच बोलना और गलत काम से बचना, इसके साथ साथ समय पर उठना, पढ़ाई करना, अपना काम करना और नियमों का पालन करना। इसके साथ माँ बच्चे को ये भी सिखाती है पढ़ाई के साथ साथ कि ज़रूरतमंदों की मदद किस तरह से की जाती है, दूसरों की भावनाओं को किस तरह से समझा जाता है। साथ ही बेटा और बेटी दोनों को हमें समान अवसर देने हैं और समानता का अधिकार उनमें रखना है। स्वच्छता की सखियों बात करें तो व्यक्तिगत स्वच्छता, घर की सफाई और स्वस्थ आत्मों का महत्व समझाना। जिम्मेदारियों की बात करें तो अपने पढ़ाई और छोटे छोटे कार्य, घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी लेना, आत्मनिर्भरता, बच्चों की उम्र के अनुसार अपने काम करना सिखाना भी बच्चों को आना चाहिए। तो माँ की भूमिका बहुत ज़्यादा बच्चे के जीवन में रहती है। बच्चा केवल कही हुई बातें नहीं सीखता, बल्कि माता पिता के व्यवहार को देखकर भी सीखता है। यदि माँ स्वयं ईमानदार है, धैर्य, सम्मान और अनुशासन का पालन करने वाली है, तो बच्चे भी इन गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ सखी, इसी तरह से माँ करती है और इसी तरह से बच्चे भी सीखते हैं अपनी माँ से। तो इन्हीं बात और जानकारियों के साथ हम आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर। तो आइए सुनते हैं मिलजुल कर प्यारा सा गीत। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, हम फिर से वापस आएंगे और ढेर सारी जानकारियाँ आपके साथ और भी साझा करेंगे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सखी गीत और अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रही हैं सुनो सखी, और सुनो सखी कार्यक्रम में माँ की पाठशाला पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो आइए थोड़ी सी और बातचीत कार्यक्रम में करते हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी समय हमारे पास बहुत सारा है। आज हम बच्चों की बात सखियों कार्यक्रम में कर रहे हैं कि बच्चों को सिखाना पढ़ाना माँ की पाठशाला के द्वारा यानी हम अभिभावकों के द्वारा ही होता है। हम बच्चों को उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में बातचीत करना बताते हैं, सिखाते हैं, उन्हें बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए हम बहुत ही प्रयत्न करते हैं, और हम खेल खेल में आसान तरीकों से बहुत कुछ बच्चों को सिखाना भी चाहती हैं। सबसे पहले बड़ों का आदर करना, जैसे

ने पहले भी बात की, हमारे घर पर दादा दादी नाना नानी बड़ों का आदर सम्मान करना, उनकी हर बात मानना हम बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ साथ घर के छोटे छोटे काम करना, जैसे अपना बिस्तर खुद ठीक करना, खाने की प्लेट बर्तन जो भी हैं किचन में रखना, और अपना सामान संभालना, जैसे खिलौने सही जगह पर रखना, स्कूल से आने के बाद अपने स्कूल बैग को अच्छे तरीके से रखना, ये सब बातें हम अभिभावक ही बच्चों को सिखाते हैं। ये सब बातें घर के प्रति बच्चों की जिम्मेदारी भी बनती है। सभी बच्चों को खुद के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे समय का पालन करना, सुबह सही समय पर उठना, समय पर पढ़ाई करना, समय पर सो जाना, स्वच्छता की बात करें तो रोज ब्रश करना, नहाना, साफ कपड़े पहनना, हाथ धोकर खाना खाना इत्यादि। छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चे को हम सिखाती हैं, और बच्चे को इनका ध्यान भी रखना चाहिए। ईमानदारी भी बच्चों को सिखाना बेहद ज़रूरी होते हैं। जो जिम्मेदारी हम अपने परिवार, समाज, विद्यालय और देश के प्रति निभाती हैं, वो ही हमारे कर्तव्य भी होते हैं। सभी बच्चों को हमें ये समझाना जरूरी है कि हम अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी हमारी होती हैं कि हमें पढ़ाई का अधिकार है तो हमें मन लगाकर पढ़ना है, और विद्यालय के नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। बच्चे अक्सर वो ही करते हैं जो माता पिता करते हैं। माता पिता यदि ईमानदार जिम्मेदार हैं तो बच्चे भी वही चीज़ उनसे सीखते हैं। तो सुखी कार्यक्रम में हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
2: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
0: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
2: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: सखी संतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सखियों का स्वागत है। सखी आया, हम बात कार्यक्रम में कर रहे थे बच्चों की जिम्मेदारियों के बारे में। बच्चों को हमें ये सिखाना और समझाना है कि अपने अधिकारों की जानकारी होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी होती है कि हमें अपने माता पिता के कहना मानना, आदर करना, और बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। और माता पिता यदि ईमानदार होंगे तो बच्चे तो अपने आप ही ईमानदार होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं बच्चे माता पिता को करते सीखते हैं। जो भी माता पिता बोलते हैं, जिस तरह से करते हैं, कई बार तो क्या होता है कि बच्चे खाना बनाना भी माता पिता से धीरे धीरे सीखने लग पड़ते हैं। तो सर ये तो थी बच्चों की जिम्मेदारियों की बात। अब बच्चों की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व गर्भ निरोधक दिवस के बारे में। 26 सितंबर यानी आज का दिन हम मना रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को गर्भ निरोधक साधनों, परिवार नियोजन और सुरक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सही से जानकारी देना है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिला और पुरुषों को उपलब्ध निरोधक तरीकों की जानकारी देना है। साथ ही साथ परिवार कब और कितने बच्चों का हो इस बारे में भी दंपतियों को स्वेच्छा से निर्णय लेने की जानकारी और सहायता देना है। किशोर और युवाओं को सुरक्षित तथा जिम्मेदार प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में भी शिक्षित करना है। तो सखी ये तो थी गर्भ निरोधक दिवस की जानकारी। अब थोड़ा सा और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परमाणु हथियार के उन्मूलन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया को परमाणु हथियारों से होने वाले विनाश के प्रति जागरूक करना है और परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा भी देना है। साथ ही साथ सखियों, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जनहित, पर्यावरणीय नुकसान और दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रभाव पैदा कर सकता है, इसलिए इस दिवस के माध्यम से देश के बीच में निरस्त्रीयकरण, संवाद, शांति और आपसी प्यार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में 26 सितंबर को इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था और 26 सितंबर 2013 को परमाणु निरस्त्रीयकरण संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक उच्च स्तरीय

बैठक भी आयोजित की गई थी। सखियों, परमाणु हथियारों के कारण मानव जीवन को हानि हो सकती है, शहरों और बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश हो सकता है, साथ ही साथ विकिरण का प्रभाव लंबे समय तक बन सकता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, हम बहुत कुछ जान भी सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। इसके साथ साथ घड़ी की सुइयां अब हमें इशारा कर रही हैं कि हमें घर परिवार के किचन में चलना चाहिए। तो आइए जल्दी से चलते हैं किचन में और बनाते हैं मूंग दाल का कटलेट। इसके लिए सखियों हमें चाहिए होती हैं कुछ सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, प्याज, धनिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे से धो लें और बारीक बारीक काट कर रख लें। अगर आप इसे चिड़वे से बनाना चाहते हैं, जिसे चिवड़ा भी हमारी सखियां कहती हैं, उसे भी बना सकती हैं। और अगर इस तरह से नहीं बनाना है तो बेसन डाल के भी बना सकती है। अब सभी सब्जियों का क्या करना है, एक बाउल में लेना है, उसमें हमें थोड़ा सा डालना है बेसन बाइंडिंग के लिए, ताकि वो इकट्ठा हो जाए। उसमें डालने हैं सभी मसाले, मिर्च, हरी मिर्च खाते हैं आप तो हरी मिर्च डालें, नहीं तो लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डालकर उसे अच्छा सा टिक्की का आकार दे दें। उसके बाद उसे अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद उसे चटनी के साथ सर्व करें। तो सखियो, आप करें बनाने की तैयारियां, और आपकी तैयारियों के चलते चलते हम आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। तो इसी तरह से सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला और जुड़े रहिए सुनो सखी कार्यक्रम के साथ। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: सके। इसी गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया है सुनील कुमार ने। प्यारी सखी नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea. The minister said that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the UN General Assembly in New York. Dr. Jaishankar announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers. He said these incidents could no longer be viewed as isolated cases, as commercial ships and sailors have faced a series of attacks across key waterways. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by artificial intelligence, anticipate its consequences, and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Yerapetridis. During the event, Dr. Jaishankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries. Delivering India's statement at the 50th annual meeting of foreign ministers on the Group of 77 at the 81st session of the UN General Assembly in New York, Mr. Misri called for collective efforts to enable the Global South to move from being rule takers to rule shapers. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Poorna Salila Srivastav, reaffirmed India's commitment to strengthening global pandemic preparedness and response at the UN high-level meeting in New York. Addressing the meeting, the Secretary outlined India's coordinated approach to pandemic prevention and response across government and society, which covers a wide range of potential health emergencies. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Keralam today. Mr. Shah will inaugurate women's empowerment initiatives in the cooperative sector at Kundara in the late afternoon. Later, he will attend the Amrita Kirti Puraskar ceremony at Amritapuri in Kollam district. Prime Minister Narendra Modi paid tribute to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said Dr. Singh spent many years in public life and served the nation with dedication. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Uttar Pradesh and Uttarakhand today. The IMD has said that due to the depression over South Chhattisgarh and adjoining South Interior Odisha, very heavy rainfall is likely to prevail at isolated places over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand. The Met Department has also predicted heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the day. The Indian women's kabaddi team clinched gold after beating Iran. The Indian women went on an unbeaten run throughout their campaign. This historic victory marked India's third gold medal of the ongoing Asiad competition, following earlier triumphs by the women's cricket team and the shooting duo of Suruchi Singh Phogat and Kamaljeet in the 10-meter air pistol mixed team event. India won the silver medal in the women's 50-meter rifle three positions team event at the Asian Games today. The trio of Tilotama Hema Sen, Vidarsha Vinod and Ashi Chokse scored 1,763 points, finishing behind China, which secured gold with the game's record, 1,773 points. Meanwhile, Indian squash players delivered a strong performance at the Asian Games, with teenager Anahat Singh reaching the women's singles final after a remarkable comeback against Japan's world number 6, Satoma Watanabe. With this, India stands on 12th position with a total of 27 medals, including 3 gold, 11 silver and 13 bronze. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे वो हमें मिल गए। विशाल आनंद अभिनेता, निर्माता, निर्देशक देव आनंद के भतीजे हैं और विशाल आनंद ने इस फिल्म में अभिनय किया था। और साथियों, जो मैसेज मिला है ये है कि इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि इसी फिल्म से मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी को बड़ा ब्रेक मिला था। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे रवि गुप्ता और आशा, यानी कि विशाल आनंद, सिमी ग्रेवाल, नाजनीन और डॉक्टर श्रीराम लागू। साथियों, बिछड़ के फिर मिलेंगे, यकीन कितना है, महज ख्याल है मगर हसीन कितना है। ज़िंदगी का सफ़र मुलाकातों और जुदाई का एक ऐसा सिलसिला है, हर मिलन के बाद बिछड़ना पड़ता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद का दिया जलता रहता है कि हम बिछड़कर फिर मिलेंगे। ये एक ऐसा एहसास है जो उम्मीद और रिश्तों की गहराई को बयां करता है। मिलन की आस बिछड़ने के दर्द को कम करके दिल में नई आशाएँ जगाती है। वक्त के साथ दूरियां कम होती जाती हैं और दोबारा मिलने के रास्ते बनते हैं। सच्चे रिश्ते फासलों से कम नहीं होते बल्कि और मजबूत होते हैं। बिछड़ना अंत नहीं बल्कि एक नए और खूबसूरत मिलन की शुरुआत का इंतज़ार है। साथियों, जब कोई आपसे मिलकर या मुलाकात के बाद जाने लगता है तो आप उन्हें कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, बताएं हमें भी। और किताबी भाषा की जगह थोड़े आसान भाषा में अपने जवाब लिखें। दोस्तों, स्कूल कॉलेज के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले मिलकर बिछड़ जाते हैं और उनमें से कुछ लोग दोबारा मिल भी जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि अचानक ऐसे लोग सामने आ खड़े हुए या किसी डगर पे दोबारा मुलाकात हो गई तो आपको कैसा लगा? उस खुशी को हमारे साथ बांटिए और साथ में ये भी बताइए कि मुलाकात के बाद, यानी कि टाटा, बाय बाय, सायोनारा जैसे कौन से गीत आपके जहन में और मन में इस वक्त आ रहे हैं, हमें वो भी बताएं। और अब बात होगी 1970 में आई फिल्म आन मिलो सजना की, एक मशहूर बॉलीवुड संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसकी कहानी प्यार, धोखे और रिश्तों के उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द घूमती है। कई नाटकीय मोड़ आते हैं जहां अजीत और वर्षा के प्यार की परीक्षा होती है और अंत में सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये अजीत, वर्षा, अनिल और सावित्री की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे। तब तक आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, अरुणा ईरानी, निरूपा रॉय, सुजीत कुमार, राजेंद्र नाथ और जूनियर महमूद। हमारे साथियों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और जवाब लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी किसी का मिलना ही हमारी मंजिल बन जाता है और फिर उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। चाहत बस इतनी होती है कि वो थोड़ा और ठहरे, क्योंकि कुछ साथ पल भर के नहीं होते, उम्र भर के लिए अच्छे लगते हैं। और हम कहते हैं कि आपने टॉपिक को बिल्कुल सही पकड़ा है। कुछ रिश्तों में भरोसा इतना गहरा होता है कि जुदाई का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है साथ यूं ही बना रहे और ये सुहाने पल कभी जल्दी ना ढलें। मोहब्बत शायद यही है, किसी के आने से दिल को मंजिल मिल जाए और उसके जाने का ख्याल आते ही दिल कहे ठहरो, अभी तो कुछ पल और साथ रहो। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत में हमें भरोसा भी नज़र आया तो दिल ने कहा, भरोसा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, उसे बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक छोटी सी ठेस भी इसे हिला सकती है। भरोसा वो है जहां शब्द कम पड़ जाएं, फिर भी दिल कहे तुम हो तो सब ठीक है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अर्पण का गीत परदेस जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया इसका इंतजार है। जब मिले हम तो थमी सी रह गई ये जिंदगी, तेरी आंखों ने कहा मैं हूँ यहीं पर कहीं, फासले जितने भी हो अब इस जमाने के दरमियां, तेरी धड़कन में धड़कता रहूंगा मैं हर घड़ी। हमारी एक साथी ने लिखा है कि जहाँ एक तरफ मंजिल पा लेने की खुशी है तो दूसरी तरफ किसी खास इंसान के बिना रहने की बेबसी और अधूरापन भी है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुँच जाता है लेकिन वहाँ उसके साथ उसका वो ख़ास शख्स नहीं होता तो वो सफलता या मंजिल भी अधूरी सी लगने लगती है। अगला कमेंट है कि आज फिर

मैं लंबी यात्रा पर हूँ, ट्रेन में कार्यक्रम का लुत्फ उठाऊंगा, तो ठीक है, सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज लाइव रहना बड़ा मुश्किल है, हमारे फॉर्म हाउस पर नेट बहुत वीक होता है, अगर सही रहा तो ज़रूर जुड़ूंगी। तो ठीक है, कोशिश कीजिए नेटवर्क में आने की। एक साथी ने लिखा है कि नज़रों ने जब से तुम्हें पाया है, इस दिल को सिर्फ तुम्हारा ही साथ भाया है। तुम दूर जाने की बात करते हो, ज़रा सोचो तुम्हारे बिना मेरी सुबह और शाम का क्या होगा।

इस हसीन मौसम की हर बूंद मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अभी तो धड़कनों ने संभलना सीखा है। अभी से मुख मोड़ कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा एतबार है, बस इस बात का डर है कि ये वक्त कहीं हमें जुदा ना कर दे। आओ कुछ पल और पास बैठो, ताकि इन ढलती हुई रातों में हम अपनी अधूरी दास्तां को पूरा कर सके। बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिछड़ गए तो फिर मिलेंगे हम दोनों एक बार, या इस बस्ती में या इसकी हदों के पार। साथियों, हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है। दुनिया की इस भाग दौड़ में या हालात की वजह से रिश्ते, नाते, मोहब्बतें, दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बिछड़े हुए लोग दोबारा मिल जाते हैं। कहते हैं कि दिल की लगन हो सच्ची तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और मिलकर बिछड़े हुए दोबारा मिलते हैं। रिश्ते और मोहब्बतें वक्त और फासलों से ज़्यादा असर रखती हैं, और बिछड़ने के बाद मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। सदाबहार मेलोड्रामा फिल्म आया सावन झूम के जय शंकर और आरती की कहानी। अनजाने में जय की गाड़ी से एक व्यक्ति की टक्कर और मौत, जो कि आरती के पिता थे। इस भयानक हादसे के बाद एक गहरा अपराध बोध, उसके बाद कहानी में गलत फहमियाँ, उतार चढ़ाव, सच्चाई का सामने आना और एक समाधान पर कहानी ख़त्म। तो बताइए कि ये जय आरती कौन थे, और आया सावन झूम के इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम भी हमारे FB पेज पर लिख दे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है आया सावन झूम के। और आपके जवाबों का हमें है इंतज़ार।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जो जवाब लिखे वो हमने देख लिए हैं और उन्हें अभी पढ़ देते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, निरूपा रॉय, नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, रूना ईरानी, जलाल आगा, और इस फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झलाई और निर्माता थे जे ओम प्रकाश। अब पढ़ते हैं आपके कुछ और कमेंट्स। आज की इबारत मिलन और बिछड़ने की उम्मीदों को लेकर घड़ी गई है और इस दृष्टिकोण से आज की ये इबारत सराहनीय है। एक साथी ने लिखा है कि प्रेम में बस एक बात समझी जा सकती है कि सरलता ही प्रेम है और ये सरलता ही दो लोगों को जोड़े रखती है। अगर आपके मन में सरलता नहीं है तो बिछड़ना तय है। अगला मैसेज है कि जहाँ एक पक्ष रोक रहा है और दूसरा पक्ष उसे समझा रहा है और विश्वास दिला रहा है, ये इबारत प्रेम की उस अवस्था को दर्शाती है जहाँ मिलन की खुशी और बिछड़ने का डर साथ

साथ चलते हैं। प्यार में मिलन के हसीन पल वाकई बहुत खास, गहरे और जीवन भर के लिए यादगार पल होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हसीन पल एक ऐसी अनमोल पूंजी बन जाते हैं जिन्हें इंसान मुश्किल वक्त में भी याद करके मुस्कुरा उठता है। एक साथी ने लिखा है, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, तो हमारी तरफ से आपको भी। अगला एक मैसेज है कि आज तो सिर्फ सुनने का मन है, कोई कमेंट नहीं। हमें ये गाना याद आ रहा है, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी प्यार का सबसे सुंदर हिस्सा मिलना नहीं बल्कि बिछड़ने के बाद भी किसी का दिल में बने रहना होता है। कुछ लोग जिंदगी में पल भर के लिए आते हैं मगर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। मिलन चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है और फिर बिछड़न आंखों में नमी। मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। एक साथी ने लिखा है, मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। अगला मैसेज है कि उम्र के इस मोड़ पर बिछड़े कॉलेज मित्र जब सालाना यूनियन मीटिंग में मिलते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो आयु बढ़ जाती है। हमारे एक साथी ने एक लिस्ट भेज दी है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, आ जा रे प्यार पुकारे नैना तो रो रो, बाय बाय मिस गुड नाइट कल फिर मिलेंगे, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, ये गीत लिखकर इन्होंने भेजे हैं। एक साथी ने लिखा है, आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, परिवार के संग हूँ। एक साथी ने लिखा है कि घर में बहू बेटी जब जाती है तो जत्रा निकाला जाता है, उसका कुछ ले जाने वाला सामान एक अच्छे समय पर घर से बाहर कहीं पर रख दिया जाता है और जाते समय उसे भी ले लिया जाता है। एक साथी ने लिखा है कि जब मैं 6 साल का बच्चा था तब बिली मोरा के पास एक कस्बे में मेरा बहुत प्यारा मित्र था, बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया कारण इसके बाद संपर्क टूट गया, पर मैंने FB पर उसे ढूंढ निकाला और एक दो बार अच्छी तरह उनसे बात भी हुई, पर बाद में उनसे हमारा संपर्क टूट गया।

साथियों, अमेरिकी साहित्य के एक मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की अंग्रेजी कहानी द प्रिंस एंड द पाउपर पर आधारित ये एक नैतिक सीख देने वाली फिल्म है राजा और रंक। एक गरीब लड़का और एक राजकुमार जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की पहचान अपना लेते हैं। राजकुमार को बाहर की दुनिया की गरीबी कठिनाइयों का अनुभव होता है, जबकि रंग को राजमहल के कड़े नियम और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। अदला बदली की ये कहानी हमें इंसानियत और दूसरों के दुख दर्द को समझने की सीख देती है। तो बताइए हमें कि ये राजा और रंग की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता कौन थे, और खलनायक और साथी कलाकारों के नाम भी लिख दें।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। सुधीर और विजय यानी के संजीव कुमार, महेश कोठारे, निरूपा रॉय, अजीत कमल कपूर और कुमकुम, इस फिल्म के निर्देशक थे कोलजी प्रत्यगात्मा और निर्माता थे एलवी प्रसाद। गीत में साथियों आवाज़ आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम था राजा और रंक। आवाज़ की दुनिया के दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफ़र, तो हम अपने साथियों के कुछ संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। एक साथी मित्र ने लिखा है कि अगर दिशा भूल में कोई विदा लेता है तो उनकी शुभ यात्रा हेतु पहले ही कोई वस्त्र यात्रा के रूप में अन्य के घर में रख दिया जाता है, फिर यात्रा वाले दिन वहां से लेकर यात्रा करते हैं। ये शुभ मंगल यात्रा का धार्मिक प्रावधान है। एक साथी ने लिखा है कि मेरा प्यारा पालतू लैब्राडोर बीटल नाम था उसका, दो दिन पहले वो गुजर गया हमेशा के लिए मुझसे। उन्होंने लिखा है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, मेरा आखिरी गीत यही है।

साथी ने लिखा है कि फूल खिले हैं तो झड़ेंगे ही, बादल हैं तो खिलेंगे ही, भूख प्यास है तो तड़पेंगे ही, ईर्ष्या है तो जलेंगे ही, तारे हैं तो टूटेंगे ही, अपने हैं तो रूठेंगे ही, और प्रेमी हैं तो बिछड़ेंगे ही। ऐसा क्यों जी?

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं शम्सुल हुदा बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। एक रहस्यमयी और पुनर्जन्म पर आधारित क्लासिक फिल्म जिसमें प्यार, धोखा, सस्पेंस का ताना बाना बुना गया, जहां अंत में सारे राजों से पर्दा उठता है। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और निर्देशक का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, और किसी को आप कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, वो भी लिख दीजिए।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए और अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, बिस्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और निर्देशक थे ब्रिज सदाना। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि बंद मुट्ठी आए थे जाएंगे खुले हाथ, आए थे अकेले जाएंगे अकेले, इससे जुड़ा गुजराती भजन है, एकला जा आव्या मनवा एकला जवाना साथी विना संगी विना। इस आने जाने के बीच हमें जो मित्र या जीवन साथी मिला, परिवार बना, उसी से बना ये जीवन चक्र यूं ही चलता रहा है और रहेगा। और इस जीवन चक्र में जब विविध भारती

ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड, जो भारत की पहली 70mm टेक्नीकलर फिल्म थी, जिसमें सफ़र के दौरान रोमांस, कॉमेडी और विदेशी नज़ारों की यात्रा को दिखाया गया है। आखिर में सब साजिशें बेनकाब होती हैं और कहानी का सुखान तो होता है। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में राज कपूर की नायिका कौन थी, जिनके माता पिता भी महान कलाकार हैं और साथ में इस फिल्म के खलनायक का भी नाम लिख दे। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं, इसमें किसकी आवाज़ें हैं वो भी हमें बताएं और साथ में इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी लिख दें।

प्रेम चोपड़ा, अमिता असला, अचला सचदेव और राज मेहरा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे पच्छी। गीत में आवाजें थी मुकेश और शारदा की। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड और अभिनेत्री राजश्री के पिता मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम जी और उनकी माता जी जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में की गई थी। साथियों, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुरीला सफ़र के बन के हम सफ़र, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

मित्रों, जीवन में कई मोड़ आते हैं। खुशियों में हम खुश होते हैं, दर्द में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कभी तो ये राहें आसान लगती हैं, लेकिन कभी कभी ये राहें इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम अपना धैर्य खो देते हैं। कठिन समय शायद हमारी परीक्षाओं का समय होता है, जिनमें कभी तो हम धैर्य रखते हैं और कभी टूट भी जाते हैं। जिंदगी के ताने बाने में धैर्य या सहनशीलता को धारण करना आत्म संयम को बढ़ाता है। धैर्य मुश्किल हालात में हमारे लिए किसी ढाल की तरह होता है और हम मुश्किल वक्त से पार पाने में समर्थ हो जाते हैं। जिंदगी फिर किसी प्यार के नगमे की तरह लगने लगती है।

स्वभाववश हम विपरीत परिस्थितियों में भी कभी कभी अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस करते हैं कि लगता है जिंदगी यहीं थम गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसमान के पंछियों की उड़ान जो नाजुक पंखों के भरोसे ही तय होती है, उन नदियों की धाराओं को देखिए जो रास्ते के पत्थरों को भी पार कर आगे निकल जाती है, वो माली जो फूलों और फलों के आने का इंतजार बड़ी धैर्यता पूर्वक करता है, चातक पक्षी स्वाति की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, धरती धैर्य धारण कर अच्छे ऋतु चक्र में फसलों से लहलहा जाती है, तो क्यों ना हम अपने मन को इन पलों में धीर धरना सिखाएं।

समय एक सा नहीं होता, बदलता रहता है। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह होती है। एक नया सवेरा जागता है, उम्मीद की नई किरणें हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देती हैं। हौसला जो हमने अपने दिल को बंधाया था, इस मुश्किल वक्त में संघर्षों का सामना कर

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक
1: अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार

0: एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR

0: राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केंदुझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें 7

के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जय।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज है हेमंत कुमार की, फिल्म का नाम है 16वां साल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है बात एक रात की।
5: मगर लगता है कुछ ऐसा, मिल गया

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा ले

0: लिखा, इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारी लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
1: इंतजार कीजिए
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
4: जरा नजरों से कह दो जी।

FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार में सामयिक चर्चा रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से एम्स बिलासपुर तक राज्य पथ परिवहन निगम की सीधी बस सेवा शुरू की गई है और इस समय 10 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने आज शिमला में बताया कि इन बसों के माध्यम से राज्य के विभिन्न इलाकों से प्रतिदिन लगभग 1000 यात्री सफर कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने बताया कि नालागढ़ से रामशहर और बद्दी से बघेरी होते हुए भी एम्स के लिए 2 नई बस सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार अन्य इलाकों को भी इस सुविधा से जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से मरीजों और तीमारदारों को सुविधा मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित प्रदेश दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कुल्लू के उपायुक्त सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति का जिले में प्रस्तावित प्रवास 6 से 8 अक्टूबर तक है। इस दौरान उनका अटल टनल रोहतांग और मनाली के माता हिडिम्बा मंदिर का दौरा करने का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि 5 से 8 अक्टूबर तक पुलिस थाना मनाली के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों में आम नागरिकों द्वारा हथियार व गोला बारूद ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों में ड्रोन, मानव रहित विमान, पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे और अन्य हवाई उपकरणों को उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कांगड़ा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग ने सभी निर्णय सर्वसम्मति और संविधान के अनुसार लिए हैं, जबकि विपक्षी दल अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तथ्यों और आधिकारिक बयान के बिना ही प्रदर्शन कर रही है, जबकि अपनी हार के लिए उसे आत्मचिंतन करने की जरूरत है।
1: विपक्ष अपनी हार पर पर्दा डालना चाहता है, आत्मचिंतन नहीं करते। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें राज्यों में राज करती रही, तब तो इनको एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती थी, तब इनको इलेक्शन कमीशन में कोई खोट नजर नहीं आता था। लेकिन आज अगर मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण बार बार भाजपा की सरकारें बनती है, तो ये कोई ना कोई बहाना ढूंढते आरोप लगाने का। एक आदत सी बन गई है झूठे आरोप लगाने की। इलेक्शन कमीशन ने जितने निर्णय लिए सर्वसम्मति से और मेजोरिटी से वो लिए।
0: सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के लिए कौशल्या बांध से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए 22 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है। विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने बताया कि इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।
2: सड़कों के ऊपर हमने काफी मेहनत की, जो वर्षों से लंबित सड़कें थी उन्हें हमने सुचारू रूप से चालू किया है। अब हमारी जो अगली प्रायोरिटी थी वो है पानी की, और उसमें हमने जो कौशल्या बांध है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते आए हैं, 22 करोड़ उसका जो टेंडर है वो फ्लोट हो चुका है और लगभग 10 या 15 दिन में वो ओपन हो जाएगा, तो जिसे एलोकेशन होगी जो निर्माण काम है वो शुरू हो जाएगा।
0: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 के अंतर से पराजित किया। भारतीय टीम पूरी प्रतियोगिता में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा सिरमौर जिले से संबंध रखती हैं, जबकि उनके अलावा भी टीम में 3 अन्य खिलाड़ी हिमाचल से हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने स्वर्ण पदक जीतने पर बेटियों को बधाई दी है।
3: हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हिमाचल की बेटियों ने एक बार फिर से कबड्डी की एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। सिरमौर जिला की 2 बेटियां पुष्पा राणा के कैप्टनशिप में और रितु नेगी, भावना ठाकुर मंडी और ज्योति ठाकुर सोलन, इस प्रकार हिमाचल प्रदेश की 4 बेटियों का अहम योगदान कबड्डी के ऊपर लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के कीर्तिमान स्थापित किया।
0: प्रदेश के अनेक भागों में मौसम ने आज एक बार फिर करवट ली है और राजधानी शिमला सहित अनेक क्षेत्रों में दोपहर बाद से वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आज से 29 सितंबर तक राज्य में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए पेश है सामयिक चर्चा। विषय है सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण कदम। वाचक स्वर पूनम शर्मा का है।
0: संसद द्वारा पारित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 एमएसएमई के लिए भारत के कानूनी ढांचे को तेजी से बदलते तंत्र के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मूल अधिनियम के बाद से पिछले दो दशकों में लाखों उद्यम औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं और एमएसएमई राष्ट्रीय विकास, निर्यात और रोजगार सृजन में अहम योगदान देने वाले बन गए हैं। इस संशोधन का उद्देश्य एमएसएमई इकोसिस्टम को ज्यादा संवेदनशील और भरोसे पर आधारित बनाना है। इससे पंजीकरण आसान होगा, वर्गीकरण बेहतर होगा, ऋण तक पहुंच और समय पर भुगतान आसान होगा, विवादों का निपटारा डिजिटल और तेज होगा और नियमों का पालन आसान होगा। इस संशोधन में उद्यमों के मुफ्त और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान किया गया है। इससे कई तरह की बाधाएं दूर होंगी और सरकार को बेहतर तरीके से लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। अधिनियम के तहत पंजीकरण एक पात्रता है जिसका दावा कोई भी कंपनी कर सकती है, ये कोई बाध्यता नहीं है। ये संशोधन संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों में निवेश और कारोबार के संयुक्त मानदंडों के आधार पर उद्यमों के वर्गीकरण के लिए एक स्पष्ट फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस वर्गीकरण से फ्रेमवर्क को प्रौद्योगिकी, लागत, बाजार और व्यवसाय मॉडल में आने वाले बदलावों के अनुसार तेजी से ढाला जा सकता है और ये केंद्र सरकार को अधिसूचना के माध्यम से इसकी सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार देता है। ज्यादातर एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी चिंता नियमित नकद प्रवाह की होती है, क्योंकि किसी छोटे उद्यम का एक भी भुगतान न मिलने का व्यापक असर कर्मचारियों के समय पर वेतन, कच्चे माल की खरीद और अगले ऑर्डर को स्वीकार करने पर पड़ता है, जिससे भुगतान में देरी होने से कंपनी के काम करने और आगे बढ़ने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस संशोधन में इस समस्या को तीन चरणों, रोकथाम, समाधान और कार्यान्वयन के माध्यम से दूर करने की कोशिश की गई है। राज्य सरकारें भी यही नियम अपने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के नाते एक स्वीकृत इनवाइस के आधार पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से तुरंत वित्त पोषण प्राप्त करने की सुविधा देता है। इससे आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान मिल जाता है, जबकि खरीदार तय तिथि पर बैंक या वित्तीय संस्थान को भुगतान चुकता करता है। इस प्रकार मिलने वाली रकम आपूर्तिकर्ता के लिए लिक्विडिटी का जरिया बन जाती है, जिससे कंपनी को अपने कामकाज का प्रबंधन करने, बिलों का भुगतान करने और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आसानी होती है। समाधान इस अधिनियम के विवाद समाधान फ्रेमवर्क को और अधिक मजबूत करता है। ये राज्य सरकारों को मध्यस्थता और सुलह के लिए अतिरिक्त सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों की स्थापना करने में सक्षम बनाता है। ये मध्यस्थता और सुलह के लिए समय सीमा निर्धारित करता है और ऑनलाइन विवाद समाधान को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। इससे मामलों का तेजी से निपटारा होगा और एक ऐसी व्यवस्था तैयार होगी जिससे कंपनी प्रक्रिया और समय सीमा की निश्चितता के साथ अपने जायज दावों को पेश कर सकेगी। यदि कोई खरीदार किसी फैसले को अदालत में चुनौती देना चाहता है तो उसे तय राशि का 75% अदालत में जमा कराना होगा और यदि वह चुनौती 6 महीने तक लंबित रहती है तो अदालत उस जमा राशि में से आधी राशि आपूर्तिकर्ता को जारी कर सकती है। इस प्रकार लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी के कारण जायज दावों को खारिज नहीं किया जा सकेगा और अदालत में बीतने वाला समय अब केवल खरीदार के पक्ष में नहीं होगा। ये संशोधन उद्यमों के लिए अनुपालन के प्रति अधिक संतुलित और विश्वास आधारित दृष्टिकोण की दिशा में बदलाव को भी दर्शाता है। छोटे मोटे उल्लंघन के लिए अब पहली बार में केवल चेतावनी दी जाएगी और अपराध दोहराए जाने पर अलग अलग आर्थिक जुर्माने लगाए जा सकते हैं।
4: अभी आप सामयिक चर्चा सुन रहे
5: हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, ग्राम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नवसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज़ाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलियाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

है हसरत जयपुरी, संगीतकार है रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वद देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो ख़त हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदा राज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरिट सोलंकी और मिसेज सोलंकी। और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भिसे और योगिता जाधव से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।
1: मनचाहे गीत। मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या कर रही है? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। ला हौला वाला।
2: नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: हला, मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं, आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ू छोटे सरकार, ये मैं मर गई। अल्लाह।
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी।
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नाया बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
2: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
1: हमारे पैरों में क्या हो गया?
2: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
1: हमारे पैरों में दर्द नहीं
2: सरकार।
1: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं, निकल हमारे कमरे से।
2: सरकार।
1: अब जाती है के?
2: मुझे ना निकालिए सरकार।
1: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
2: मेरे अच्छे सरकार।
1: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
2: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
1: ओहो, कैसी बातें कर रही है हलीमा।
2: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
1: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, पहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
2: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सैर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
1: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी, किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
2: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
1: कैसर नवाब?
2: जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रही हूँ।
1: मगर ये नहीं हो सकता।
2: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
1: नहीं, ये हरगिज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
2: उनके हुक्म से तो नया बुबू ने मुझे भेजा है।
1: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
2: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी।
1: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
2: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बुबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
1: सरवरी को? ला हौला वला कुव्वत।
2: हाँ सरकार, बुबू मुझसे खफा नहीं, क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
1: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
2: नया बुबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
1: नहीं नहीं हलीमा छोड़ो।
2: मेरे नवाब।
1: हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
2: छोटे सरकार।
1: तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
2: या अल्लाह।
3: अरे भाई जहांगीर साहब और समन्या, अरे भाई क्या हाल चाल है?
4: आपकी दुआ है अफजल भाई। अम्मा यार क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
1: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है, कहिए क्या काम है?
4: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अम्मा अम्मा ये क्या किस्सा है?
1: कौन सा किस्सा?
4: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
1: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
4: वजह?
1: मैं इसे बदकारी समझता
4: हूँ। ओहो, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
1: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
4: अम्मा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
1: अतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
4: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागलखाने पहुंचा दिए जाओगे।
1: ये घर कुछ पागलखाने से कम है, जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे।
4: मैं हकीम साहब क़िबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
1: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
4: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
1: आप तशरीफ ले जाइए।
4: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
1: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
4: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छम्मन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं, बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलादे नरीना ना पैदा हुई।
1: औलाद नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
4: मगर बांदी से क्यों बिदकते हो? शादी वक्त आएगा हो जाएगी।
1: और बांदी?
4: बांदी काम आएगी।
1: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगे।
4: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म रिवाज को नहीं समझती हैं।
1: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना हो?
4: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
1: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
4: अमा अजीब हवनक आदमी हो।
1: अगर कोई औरत अपने मियाँ की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा। अगर मैं बांदी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
4: ला हौल वला कुव्वत, मियाँ तुम्हारा भेजा तो सलामत है।
1: जब अब्बा हुजूर तवायफों के यहाँ जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती
4: होगी। ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
1: जब्बार, अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है। मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
4: तो एक काम करो साहबजादे।
1: क्या?
4: जाते जाते मैं मिनहारन बी को भेजे देता हूँ, चूड़ियां पहन के बैठ रहो घर में।
1: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायब बुबू?
2: मुझे नायब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
1: हलीमा,
2: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती
1: नहीं
2: है तो...
1: हलीमा, हमें तुमसे घिन नहीं। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई। हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा, तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
2: मेरे अच्छे नवाब।
1: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा, हम इंसान हैं फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो। तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा, रहम करो हलीमा।
2: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल कैसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
1: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
2: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
1: मुझे बांदियों से घिन आती है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा।
2: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालिएगा। याद नहीं सिकंदर नवाब ने अपनी निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
1: कौन सिकंदर नवाब? वो पगले चचा?
2: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कुचों में खाक छानने लगे।
1: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
2: आपके फरिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आँख खोल कर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया, आपकी बांदी बनना मेरे लिए मेराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
1: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे?
2: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
1: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
2: मगर हूँ आपकी।
1: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
2: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
1: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितने सर्द हो रहे हैं।
2: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
1: हलीमा, हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे। तुम हमारी दुल्हन हो। खुदा और रसूल खुदा की कसम, तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा, हलीमा।
5: हर बात की एक हद होती है नायाब। लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई जी का आजार हो गई,
6: अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं।
5: ऐसा ही जुनून था, मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म। तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल जैसी दिखाई देती है।
6: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम।
5: हाँ बेगम, भला इन आंखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
6: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
5: आ जाएगी, आप देखती जाइए। जी से उतरी कि साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
6: तो फिर निगौड़ी को गांव भिजवा दो।
1: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
2: मेरा जी चाह रहा है।
1: हमें छोड़कर चली जाओगी?
2: जल्दी आ जाऊंगी।
1: कितनी जल्दी?
2: थोड़े दिनों बाद।
1: कितने होते हैं थोड़े दिन?
2: यही कुछ 6-7 महीने।
1: 6-7 महीने?
2: आहिस्ता बोलो।
1: हम मर जाएंगे।
2: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर, मेरे नौशा, बुरी फाल मुझसे न निकाली। अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
1: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा जान? ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
2: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी। सभी नहीं मर जाती, सनोबर की और बात थी। बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय, मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
1: बच्चा?
2: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
1: मेरे सर की कसम खा।
2: नहीं अल्लाह, नहीं।
1: हलीमा, तू झूठ बोल रही है। इसमें रोने की क्या बात है?
2: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
1: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा।
2: जी।
1: बच्चा कब तक होगा?
2: 6 महीने बाद।
1: अगर रोएगा तो हम पाजी को बहुत डांटेंगे।
2: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
1: तुम गांव नहीं जाओगी।
2: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
1: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
2: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
1: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
2: सरकार।
1: शट अप।
7: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
8: ये लीजिए।
7: ये शह वो मारा।
1: भाईजान, मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
8: अम्मा, इस वक्त बड़े जोर की बाजी जमी है, खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
1: भाईजान,
8: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
7: शह हशमत नवाब, शह।
1: प्लीज भाईजान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
8: ओफो, कहो क्या कहना चाहते हो।
1: जरा मैं।
8: अम्मा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता।
1: भाईजान,
8: अम्मा कह भी चुको।
1: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
7: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार? अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
1: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
7: सरवरी जालिम, पटाखा है पटाखा, है, है, क्या उठान है। अम्मा उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती।
8: अफजल भाई, अच्छा जाने दो, आगे चलो।
1: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा।
8: मियां, ये महल का पुराना दस्तूर है।
1: वो गाय भैंस नहीं, वो
7: कहो कहो, शर्मा क्यों गए?
1: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
8: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो। ला हौल वला कुव्वत।
7: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता। प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
1: भाई जान,
7: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
1: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी।
8: बहुत खूब, वो कब?
1: मैं

0: खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
1: और निकाह? काजी कौन था?
0: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
2: वल्ला तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
1: जाओ मियां, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? हाँ भाई अफजल भाई, हाँ भाई। दूसरी बाजी जमाए, ला हौल वला कुव्वत, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
0: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनोबर के साथ।
2: चमन मियां, तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
1: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दफा हो जाओ यहां से।
0: भाई जान मैं
1: बदतमीज।
2: अरे अरे, ये क्या करते हो हशमत मियां? क्या
1: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसे हुई?
2: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई चले जाओ यहां से।
3: बेगम साहिबा, एक बात कहूं?
4: कह भी चुको, क्या कह रही हो?
3: नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से हैं।
4: उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी?
3: अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए। फरागत पाकर विलायत जाने के इरादा है?
4: हाँ हाँ, खुदा जीता रखे मेरी लाडली को।
3: आमीन। तो गोद वाले को विलायत संतु न ले जाएंगी?
4: दीवानी हुई हो, वहाँ मुई ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी? खैर से वो मेरे पास ही रहेगा।
3: और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरिंगन फिर ही लग जाएगी।
4: अये है, दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारों पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई?
3: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं, मुंह जली की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं?
4: ए बुआ, तो कुछ मुंह से फूटो तो।
3: नजम बिटिया और हलीमा का बस दो चार दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
4: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त मुई को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो।
3: जो हुकुम सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी, यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी।
4: जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी।
3: आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ साहबजादे भी जिद के पूरे हैं, बस कुछ दिन जाते हैं कि आप ही आप साहबजादे के दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
4: कभी सोचती हूँ नायाब, तुम न होती तो।
3: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।
4: जरी खासदान आगे बढ़ाओ।
3: लीजिए, हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं, देखे क्या कुछ पसंद फरमाती हैं।
4: अच्छा दिखा लाओ।
3: अभी मतन, तुम्हारी बेगम कहाँ है? जाओ जरा अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है।
5: ओहो नायाब बुबू, कहिए महल में सब कैसे हैं? अच्छे तो हैं?
3: जी हाँ, सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया।
5: जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी।
3: लॉन्ड्री तो आपके पास हाजिर हुई थी।
5: क्या है?
3: ये जेवरात पसंद फरमाइए।
5: क्यों?
3: रानी बिटिया, नवाब दुल्हन ने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बम्बई ऑर्डर जाएगा।
5: मैं क्यों पसंद फरमाऊं?
3: छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए।
5: कौन छोटे सरकार? छम्मन मियां?
3: जी जी हाँ।
5: ओहो, हलीमा बीवी के लिए मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं?
3: क्या फरमा रही है बिटिया, छोड़िए मजाक, ये देखिए ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा ये, हाँ लाकिट।
5: इसमें मजाक की कौन सी बात है, छम्मन मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीबी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत
3: है? हाय हाय, रानी बिटिया क्या फरमा रही हैं आप?
5: क्यों, क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है?
3: खुदा ना करे, हलीमा तो बांधी है।
5: बच्चा तो छम्मन मियां का है ना।
3: बच्चा? कैसा बच्चा?
5: फरखुंदा खाला कह रही थी कि
3: बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांदियां इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती हैं।
5: बोलो बोलो, जब्बार की कसम खाकर कह दो।
3: ए बिटिया, आप भी गजब करती हैं, आखिर को नवाबजादे हैं, मगर वो लौंडी बांदी तो जी का बेलावा होती हैं, इन कमबख्तों से शादी ब्याह नहीं होता।
5: तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं? हम नवाबजादियों से।
3: और क्या बिटिया रानी,
5: हशमत भाई की तो एक बांदी थी, क्या नाम था, सनोबर?
3: ये वो रानी बिटिया, ये जेवर तो मुलाहजा फरमाइए।
5: एक बात पूछूं, सच सच बताओगी बबू?
3: शौक से पूछिए, मगर वो
5: नवाबजादों के लिए तो बांदियां होती हैं और नवाबजादियों के लिए गुलाम।
3: हाय हाय बिटिया रानी, जरा तो शर्म कीजिए, ये आप क्या कह रहे हैं?
5: क्यों, अगर छम्मन

0: खाने को भेजे हैं। खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बंबई से बनकर आएंगे।
1: नाया बूबू, तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है? समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
0: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
1: ऐ है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
0: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं, मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चों वाली होकर, तौबा मेरी तौबा। बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
1: ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बंद करके क्या बिगाड़ लिया, जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है इज्जत है।
0: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती हैं, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती हैं बेगम, नौच यो कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या अर्ज करूं बेगम से जाके?
1: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
2: अम्मा हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिठाई से इकरार, एक तो मोहरी में मुंह देते हो और।
3: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है।
2: मियाँ तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
3: कुद्दूस भाई आप नहीं समझते।
2: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे?
3: हलीमा मर जाए।
2: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे। वल्लाह क्या पटाखा है।
3: कमीने पाजी।
2: छमन होश में आओ, क्या पागल हो गया?
3: हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं किसी का खून कर दूंगा, चले जाइए यहाँ से। हलीमा, हलीमा।
4: जी सरकार।
3: कौन सरवरी?
4: जी।
3: तू यहाँ क्या कर रही है?
4: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है, कुर्ते में लगा दो।
3: चल भाग यहाँ से और हलीमा को भेज।
4: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हमाम में पानी तैयार है।
3: हलीमा कहाँ है?
4: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हमाम में लगा दिया है।
3: ओहो, हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
4: अल्लाह हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
3: जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी, चल भाग।
4: हम नहीं जाते।
3: कहाँ है हलीमा बता।
4: उई अल्लाह, मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
3: बता, नहीं बताएगी?
4: बताती हूँ।
3: बोल।
4: वो उधर शागिर्द पेशे में।
3: क्यों?
4: वो उसका जी अच्छा नहीं है।
3: ओह,
4: इमिया खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
3: फरखुंदाबाजी।
4: अरे छमन मियाँ, क्या पैदल भागे चले आप?
3: साइकिल पर। फरखुंदाबाजी वो मर रही है।
4: अहे कौन?
3: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोली भको मत।
4: ठहरो,
3: मर जाएगी, वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
4: नहीं मियाँ, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी, मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं। बुबू, नाया बुबू, अस्पताल की लॉरी आई है।
0: अस्पताल की लॉरी? दीवानी हुई है ना मुराद?
4: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
5: ये क्या किस्सा है नाया?
4: लॉरी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर, मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियां भी हैं।
5: तो ये बात है, फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत।
0: लीजिए वो आ गई।
4: तस्लीम मानी जान।
5: जियो, ये मैं अस्पताल की लॉरी क्यों आई है?
4: हलीमा को लेने।
5: तुम्हारी अकल मारी गई है फरखुंदा नवाब?
4: इस वक्त बहस ना कीजिए, पहलोठी का बच्चा है, अगर
5: तुम्हारी बला से। तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
4: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा।
5: हद से न बढ़ो फरखुंदा।
4: मुझे मजबूर ना कीजिए मुमानी जान।
5: क्या मतलब?
4: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
0: पुलिस? या अल्लाह,
5: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गारत हो मेरे सामने से।
4: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
3: नहीं, मैं उठा लूंगा।
4: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
6: ये आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
3: चुप रहो बेवकूफ।
4: कमबख्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो,
3: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है।
7: ये क्या हो रहा है?
4: आदाब मामूजान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
7: हमसे पूछे बगैर?

0: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
1: मर जाने दो
0: अब्बा हुजूर।
1: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
0: नहीं,
1: तुम्हारी ये हिम्मत? एक जलील बांदी के लिए हमसे गुस्ताखी कर रहे हो बेशर्म?
0: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
1: क्या बकते हो मर्दूत? हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
0: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
1: तुम्हारे इतने दिमाग?
2: होश में आओ बेटे, मैं मुझे डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
0: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
2: अरे कहाँ जा रहा है छम्मर मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
0: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
2: ना जाओ मेरे लाल।
0: खुदा,
2: ना जाओ मेरे लाल छम्मर।
1: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे।
2: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं उसे जानती हूँ, ना मुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
3: नहीं बुबू, कैसे हैं चमन मियां के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
4: अरे मेरे कान नखा, मुझे छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
5: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है?
4: अरे बेगम बस जान का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत।
5: घर बार कैसा है?
4: अरे बेगम कुर्बान जाऊं, ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है। बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी कि उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छम्मन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
5: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
6: नाट्य तरंग में अभी आप इसमत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हेमांगनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
7: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
8: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
7: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
9: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
7: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
10: तुम्हारी याद सताती है
7: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। साय के 4 बजे हैं। इस समय आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया, इतने बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब?
1: हाँ,
0: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट

गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में। बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब, तो ये है वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया करते थे। जागीरदार जी बोले, साहब जी ये ये आ, ये इतनी छ,

0: जोन में रही।
1: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ
0: जी,
1: मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ। ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं? जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था।
0: जी बिल्कुल।
1: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं

0: सुनाना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
1: जी
0: तो हम गए और वो भी टेनिस खेलने गए थे,
1: अच्छा।
0: वो दिलीप साहब के साथ खेलते
1: हाँ
0: थे टेनिस।
1: हाँ
0: शाम को हम पहुँचे, उन्होंने उनका म्यूज़िक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ़ कीजिए मुझे देर हो गई।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई, तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है? और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूँ, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना, बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तू, उस पे बात पे आ गई। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहां तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आर डी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं, मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूँ।
0: जी,
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है, तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना, मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत
0: जो थी,
1: बहुत बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन लिया जाए, जिसमें आपने अपनी आवाज दी।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
0: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी, गला बंद है पर कोशिश करूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले।

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने पिता शशि कपूर से कहते हैं,
1: वो मुझे पंचम दाने सिखाया पता है, उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी, डैडी
1: शर्मिला जी कैसे बोलती हैं, मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोला यही चाहिए मुझे, हाँ आगे क्या है डैडी, मैं तो भूल ही गया मुझे वो चाहिए। बहुत यादें आपने ताजा की आज
0: जी, जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी, कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना तो वो

0: उस वक्त वो एक ऐसा मायाजाल फेर देता है, फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं
1: जी,
0: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी,
1: अच्छा
0: इस गाने को लता जी गाने वाली थी,
1: अच्छा
0: जी, मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहाँ से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं, तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
1: जी
0: कोई भी गाना अच्छा, पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
1: अरे
0: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा, एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गा कर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे, दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे,
1: अच्छा,
0: और फिर ओवर टाइम, तो वहीं सोए थे वो, उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
1: जी,
0: बहुत ज्यादा
1: जी,
0: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे,
1: वो गाएगी,
0: हाँ बोले गाएगी, गाएगी पंचम, वो गाएगी, गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी,
1: जी
0: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आवाज़, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो इसकी आवाज़ जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल
1: सूट करती है,
0: इस करके ये गाना
1: क्या
0: मुझे मिला।
1: तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं, आपकी पसंद का बताइए,
0: प्लीज,
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता,
0: बिल्कुल,
1: कोई
0: बिल्कुल,
1: आप ही का गाया हुआ सुन
0: जी जी

0: ये था मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी, जी
0: ये गाना बन गया
1: जी बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं लोगों ने, किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको जन्म।

0: वाला है, उसी को बुलाना तू आ जा। ये जो वो बोलते थे ना मंदा की, मैं डायनामिक्स की जहाँ बात कर रही
1: जी जी,
0: देखिए मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ यू नो कि तारा, ये हुआ एक खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये और सॉफ्ट, उसी को भुलाना तो आजा
1: जा। क्या बात है, क्या तो बात है,
0: ये मैंने
1: ये आधार का जी, ये पंचम दाह में ही ये गुण
0: ये उतार चढ़ाव डायनामिक समझे से
1: जी, कहते जी, जी,
0: कहां कितना आपको जोर
1: देना है,
0: कहां आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह,
0: कहां आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
1: वाह।
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते
1: जी जी जी। मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला,
0: बहुत,
1: उस छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: जो ये मेरा भाग्य ही
1: नसीब नहीं मिलता है, अच्छे अच्छों को नहीं मिला
0: नहीं
1: है, अभी भी ऐसी बालगायिकाएं नहीं है जिनको हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले सके सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: तो इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी, उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म, एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ जी
0: बांग्लादेश वॉर के
1: जी
0: ऊपर वो
1: जी
0: था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: बारात, वाह।
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही, मतलब मैं समझती हूँ, एक और मेरे दिल के करीब का गाना
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना।
1: करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान
1: हाँ हाँ बिल्कुल जी
0: है तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
1: कोल्हापुरी
0: कोल्हापुरी।
1: ने जी।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहाँ प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स, मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा, वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो वहाँ एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट, मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा,
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी
1: ने,
0: कि मैं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर अब
1: अरे
0: सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: नहीं। मैंने
1: हाँ
0: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूँ और मैं लता जी के साथ गा रही हूँ,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात
0: मेरे लिए काफी
1: जी
0: है।
1: जी
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है अब,
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज मैं कोशिश करूंगी।

0: बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूँ ना, फेड इन फेड आउट पुश बैक पुश बैक, वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचम दास से सी। डा डा रा रा रा रा रा, आप समझे,
1: वो खुद भी ऐसे ही गा देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल।

0: टी के मूल मुकेश अंकल के साथ,
1: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पाकधरी के साथ
0: बिल्कुल।
1: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
0: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी, वो था रोतड़ू गाना, कांटो की दुनिया है तुझसे। फिर मैं गाती थी एक तो ना, ये मेरा चॉइस रहा है। सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
1: अच्छा।
0: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये

कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का, उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है, क्या गाती है, कर दो ना, कर दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई।

0: नहीं करूंगा,
1: बिल्कुल, इसको इसको
0: है ना,
1: स्वीकार कर लेना।
0: ये ईमानदारी
1: जी
0: है ना,
1: जी जी
0: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी,
1: जी, जी।
0: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
1: जी,
0: क्यों, मैं समझती हूँ हर कलाकार के लिए ये वो है,
1: फिल्म धर्म कर्म का
0: वो जो अंतरा है कि
1: हाँ।
0: ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे जगवा।

0: गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपका शायद अंतिम गाना था,
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं, जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर की मां
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी। मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी, क्या मतलब कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूँ, इज नासिर हुसैन। और मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड वाला फिल्म्स, आगले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम किया
0: जी,
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है, और मैं ताउम्र याद रहने वाली बात,
1: और ये आखिरी गीत इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी। कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने, फिर बहुत बदकिस्मत इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूँ। देखिए मैंने सबकी जो करियर्स की जो शुरुआत हुई है, काफी जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी
0: उनके शुरुआती दौर में,
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस यस,
0: आप हमारे लिए लकी हैं।
1: तो ये हमने सोचा ही नहीं
0: जी,
1: था
0: जी।
1: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: है ना, आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच
0: बिल्कुल,
1: गया।
0: बिल्कुल। और पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके साथ गाना आपको मिला,
1: बिल्कुल। और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
0: वो वही थी,
1: ये उन लोगों की ग्रेटनेस थी,
0: पुष्पा जी की ही आवाज हो सकती थी।
1: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क, कीजिएगा जरूर,
0: है
1: तब मैं आपको बताऊं,
0: मेरा ही सवाल है
1: क्या फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहाँ कोई हमारा एक सिंगर गया था,

0: स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए।
0: बस वो गाना
1: जी,
0: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले, पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया,

0: इस गाने के साथ। पापा जी कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, हाँ, वो पहचान, वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं, जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चले तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी, बाप रे,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: चलिए ये गीत हम सुनते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापे ट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। पंजाब पुलिस ने आज फिरोजपुर में पुलिस नाके पर चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को 3 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन और हथियार गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। फिरोजपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भूपिंदर सिंह ने मीडिया को बताया कि पंजाब पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें एक चेकिंग प्वाइंट पर रोका गया था। मामले की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंचे लहरें उठने की आशंका के कारण आज से 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के नागरिकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
5: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केओंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदिशा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी कृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Chief Justice of India, Justice Suryakant, today inaugurated the country's first Victim Rights Center in Patna. The first of its kind Victim Rights Center in the country has been established on the premises of the Bihar State Legal Services Authority. The center will provide legal rights and essential assistance under one roof to victims of various crimes, including invisible victims.
7: Addresses one important barrier by helping a person navigate entitlements that already exist. But there is another barrier that arises even earlier. A person may not even know where to run, where to turn, or the justice system may simply not reach them. The initiative we have launched today seek to address that wider gap. They take justice closer to people who too often struggle to access to it.
6: The center will provide psychological support to victims along with counseling and other facilities. It is being launched in Patna district as a one-year pilot project. The Finance Ministry has announced that all public sector banks and regional rural banks will remain open tomorrow, that is Sunday, for the convenience of customers. The ministry said this step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions.

आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में जूली फिल्म से लिया गया ये भजन अभी आप सुन रहे थे, और इसके साथ ही आज का फिल्मी भजनों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:25 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। तो आपको बता दें कि आज शनिवार है और आप सभी जानते हैं कि शनिवार के दिन हम बात करते हैं अपने जीनियस से, उनसे पूछते हैं कुछ प्रश्न और देखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन से हमारे युवा साथी जो हैं हमारे साथ जुड़ते हैं और कौन कितना सही जवाब जो है वो हमारे प्रश्नों का दे पाते हैं। तो आप सभी को बता दें कि आज का इस कार्यक्रम में आप फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से 01892224391। तो जब तक कोई हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
3: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
2: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
3: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: तो युवा साथियों, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ नर्मदा शर्मा। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम बात करते हैं अपने जीनियस से। विषय रहता है हेलो जीनियस में, आपसे कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 01892224391।

0: हेलो हेलो, किसने कॉल किया है? जरा ऊंचा बोलिए और सिग्नल में रहकर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे तक। हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार जी। अनिल
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: कुमार बोल रहे हैं जी,
0: जी अनिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: ये मैटी से। हाँ
0: मैटी से।
1: जी,
0: अच्छा, और क्या करते हैं?
1: दिहाड़ी दिवड़ी लगाते हैं।
0: दिहाड़ी लगाते हैं, अच्छी बात है ना, कुछ भी काम करते हैं ना, अपना आजीविका के लिए कुछ तो करना
1: हाँ जी, हाँ
0: है
1: जी,
0: ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो प्राउडली अपना जो भी काम है उसको भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझ के करना है ना।
1: हाँ जी,
0: ठीक है, और बताइए फिर, आपको पता है आज के कार्यक्रम में हम प्रश्न पूछते हैं कुछ।
1: हाँ जी,
0: आज का ये जो कार्यक्रम है ना, युवा मंच कार्यक्रम, इसमें हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देना होगा आपको।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है, तो चलिए हम आपसे पूछते हैं बिल्कुल आसान सा प्रश्न। शायद ये, अच्छा ये बताइए कि इंसानी शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जहाँ रक्त यानी खून जो है, ब्लड में ब्लड जो है उसकी सप्लाई नहीं होती, वह सीधे हवा से ऑक्सीजन लेता है। हमारे
1: कौन सी
0: शरीर
1: है?
0: में, हाँ, ऐसा कोई अंग है, कोई हिस्सा है जिसमें रक्त जो है वो उसका प्रवाह जो है वो नहीं होता है, वह सीधा कहाँ से लेता है ऑक्सीजन? हवा से।
1: हाँ जी,
0: हाँ बताएंगे आप?
1: नहीं मालूम नहीं है।
0: नहीं मालूम है? ठीक है, हमारी आंख का जो कॉर्निया होता है ना, हाँ, उसमें ब्लड नहीं जाता है, वो सीधा हवा से, आंख जो है वो सीधा हवा से ऑक्सीजन लेती है। चलिए, शुक्रिया आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है मैम।
0: और कुछ तो नहीं कहना चाहते आप?
1: नहीं,
0: चलिए
1: अभी तो
0: शुक्रिया, ठीक है
1: सब्जी
0: जी,
1: सब्जी देख रहे हैं, ऐसे जुगाड़ू में थोड़ा लगाया है उसको, देख रहे हैं।
0: अच्छा ठीक है,
1: ऐसे ही
0: शुक्रिया
1: तो
0: फ़ोन
1: फोन
0: करने के लिए।
1: ऑन किया तो चला हुआ था कॉल, मैंने कॉल कर
0: जी
1: लिया।
0: जी शुक्रिया, बहुत बहुत।

0: हेलो जीनियस।
1: हेलो
0: हेलो जी, कैसे हैं? नाम बताएंगे?
1: मेरा नाम सारिका है।
0: सारिका जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं कांगड़ा से बोल रही हूँ।
0: और आप पढ़ाई करती हैं? क्या करती हैं?
1: मैं 8th क्लास में हूँ।
0: 8th क्लास में हैं। अच्छा, तो शौक क्या है आपकी?
1: मैं पुलिस बनना चाहती हूँ।
0: क्या बनना चाहती हैं?
1: पुलिस।
0: पुलिस में जाना चाहती हैं आप? ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। क्या खुद ही सोचा या किसी ने बोला घर में कि आपको क्या बनना है?
1: नहीं, मैंने खुद ही सोचा।
0: आपको अच्छा लगता है?
1: हाँ जी।
0: ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पढ़ाई में आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है?
1: मैथ।
0: मैथ्स अच्छा लगता है? क्यों, ऐसा क्यों, कोई कारण?
1: हाँ जी।
0: कोई कारण मैथ्स अच्छा क्यों लगता है?
1: नहीं,
0: क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो मैथ्स से डरते हैं ना, उनको बहुत मुश्किल
1: नहीं, मैथ
0: सब्जेक्ट
1: अच्छा लगता
0: लगता
1: है
0: है।
1: मेरे को।
0: हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ ना कि क्यों अच्छा लगता है।
1: ऐसे ही आसान होता है मैथ अभी।
0: मैथ्स आसान होता है जी। चलिए, ठीक है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि दुनिया में वह कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास 3 दिल होते हैं और 9 दिमाग होते हैं?
1: ऑक्टोपस।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने तो एकदम से जवाब दे दिया। चलिए, बहुत अच्छे। अच्छा, और कुछ कहना चाहती हैं आप?
1: नहीं,
0: चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत फ़ोन करने के लिए।
1: ठीक है।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: तो युवा साथियों, आज आप सुन रहे हैं युवा मंच कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और हम बात कर रहे हैं अपने जीनियस से। हेलो
3: हेलो
2: हेलो जी, नमस्कार। हेलो
3: नमस्ते।
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: अंश गुलेरिया।
2: जी अंश, बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
3: एट्थ।
2: आप भी एट्थ में पढ़ते हैं, अच्छा। तो बताइए, आज के प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। पहले तो ये बताइए कि आपको सब्जेक्ट कौन सा बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका?
3: मैथ।
2: मैं आपको भी मैथ्स अच्छा लगता है? पहले आपकी बहन ने तो नहीं कॉल करी थी?
3: हाँ जी।
2: पहले जो कॉल आई थी वो आपने सुनी थी क्या?
3: नहीं
2: सुनी, अच्छा चलिए ठीक है। चलिए, आपको पता है आज के कार्यक्रम में हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं?
3: हाँ जी।
2: अच्छा, तो आपसे पूछा जाए?
3: हाँ जी।
2: ठीक, ये बताइए कि अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे पहला जानवर कौन सा था और उसका नाम क्या था? स्पेस में एक जानवर भेजा था ना, वो कौन जानवर था, कौन सा वाला था और उसका नाम क्या था?
3: अंतरिक्ष में जो भेजा गया जानवर।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ,
3: फ्रूट फ्लाई।
2: जानवर, कोई जानवर भेजा गया था। चलिए हम बता देते हैं, आपको नहीं पता है तो, एक डॉग को भेजा था, ठीक है, उसका नाम था लाइका।
3: लाइका,
2: ठीक है, याद रखना, अब अगली बार के लिए याद रखना, ठीक है। अंतरिक्ष में जो भेजा था
3: लाइका,
2: हाँ लाइका उसका नाम था, ठीक। चलिए, शुक्रिया आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो जीनियस।
1: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी जी। राधे राधे।
0: राधे राधे, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ।
0: और आपका नाम?
1: वंश।
0: वंश। आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमें फोन आया था, उनका नाम था अंश।
1: भाई था।
0: आपका भाई था? अच्छा, दोनों भाई। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप थर्ड में हैं और अंश जो है वो एट्थ क्लास में। अच्छा, तभी मैं सोचूं अंश और वंश। ठीक है, और बताइए आप कैसे हैं वंश, और
1: ठीक हूँ।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: खेलना।
0: पढ़ाई कैसी लगती है? पढ़ना अच्छा नहीं लगता?
1: अच्छा लगता है।
0: पढ़ना भी अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, खेलना या पढ़ना? ज़्यादा अच्छा क्या लगता है?
1: दोनों।
0: दोनों अच्छे लगते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है ना। पढ़ाई में अगर मन नहीं लगाया तो फिर आप कुछ बन कैसे सकते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर? वंश, क्या बनना चाहते हैं? कुछ सोचा ही अभी
1: आर्मी
0: नहीं।
1: ऑफिसर।
0: हाँ जी, आर्मी ऑफिसर। बहुत अच्छे। अच्छा, आपको जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चलिए आपने ये पढ़ा होगा। मुझे ये बताइए कि जो हमारा तिरंगा झंडा है ना, तिरंगा झंडा देखा है आपने?
1: हाँ जी।
0: देखा है, उसमें
1: हाँ
0: बीच में
1: जी।
0: एक गोल चक्कर बना होता है,
1: हाँ जी।
0: बना ना? तो आप कभी कभी ड्राइंग भी करते हैं, तिरंगा झंडा बनाते हैं अपनी कॉपी में भी बनाते हैं, फिर आपको पता होगा। तो चलिए बताइए कि उसमें जो जो चक्कर बना होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं?
1: 24।
0: बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, 24 तीलियां होती हैं। आप तो जीत गए, सच में जीनियस हो आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, बहुत अच्छा लगा। आपने प्रश्न का उत्तर भी एकदम से दे दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया फोन करने के लिए वंश। और
1: थैंक यू।
0: खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, ठीक है? मन लगा के पढ़ना और खेलना भी। ठीक,
1: दीदी आपका नाम क्या है?
0: मेरा नाम नर्मदा शर्मा। शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? अयाश, कहाँ से बोल रहे हो आप?
1: मैं डिब्बर डिब्बर
0: डिब्बर कहाँ हुआ? कांगड़ा। कांगड़ा में? हाँ, मम्मी क्या बता रही हैं, कहाँ पे है?
1: चक्कलंज।
0: अच्छा, ठीक। हाँ, तो आप कौन सी क्लास में हैं?
1: मैं फिफ्थ फिफ्थ
0: फिफ्थ या सिक्स्थ? फिफ्थ। ठीक, तो आपके क्या शौक हैं, क्या करना अच्छा लगता है? जैसे आपको फ्री टाइम मिलता है तो आपका मन क्या करता है कि मैं क्या करूं?
1: खेलना।
0: खेलना। क्या खेलते हैं?
1: मैं कबड्डी।
0: अच्छा, कबड्डी खेलते हैं।
1: हाँ जी।
0: अच्छा, तो बहुत सारे दोस्त चाहिए होते हैं कबड्डी खेलने के लिए।
1: हाँ जी।
0: तो मतलब स्कूल में खेलते हैं या घर आके शाम को?
1: घर में भी स्कूल में भी।
0: अच्छा, स्कूल में तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो घर में जब आप आ जाते हो तो किसके साथ खेलते हो?
1: भैया।

0: देती है।
1: अच्छा चलिए बहुत अच्छा। पढ़ाई करने में कौन सा क्या अच्छा लगता है आपको, पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी?
0: जीके।
1: जीके अच्छा लगता है।
0: जी
1: चलिए फिर हम चेक करते हैं आपका जीके कैसा है, ठीक
0: ठीक
1: है?
0: है।
1: चलिए मुझे बताइए कि मैं आपसे दो प्रश्न पूछूं क्या?
0: जी
1: अगर आप एक का जवाब दे दोगे फिर दूसरा भी पूछूंगी, ठीक है? ये बताइए कि ऐसा कौन सा फल है जिसको हम बिना धोए भी खा सकते हैं?
0: क्या
1: कोई फल है ऐसा जिसको हम बिना धोए भी खा सकते हैं?
0: हुआ? दो केला।
1: अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी जवाब दे दिया आपने। एक प्रश्न और पूछूं आपसे।
0: जी
1: अच्छा, साल का सबसे छोटा सा छोटा जो महीना होता है वो कौन होता है, जिसमें सबसे कम दिन होते हैं?
0: फरवरी।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छे, दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया। अब आप पास होते हैं ना तो हम आपको जरूर कुछ गिफ्ट देते हैं, है ना? मम्मी को बोलना कि आपको कुछ दें, वो चॉकलेट पसंद है
0: जी
1: ना, तो मम्मी से चॉकलेट लेना हमारी तरफ से, ठीक है? बहुत
0: ठीक है।
1: अच्छा लगा, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने फ़ोन किया और बहुत जल्दी से आपने दोनों प्रश्नों के जवाब दे दिए। आप सच में ही जीनियस हो, ठीक? शुक्रिया आपने फ़ोन किया।
0: थैंक यू।
1: बाय बाय।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: तो युवा साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नर्मदा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरेले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

मौजा ग्रैंडिया कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 6:30 पर। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे रात्रि 8:00। आकाशवाणी शिमला से 6:45 पर प्रादेशिक समाचार और रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम हिमदर्शन रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9:00 News@9, रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम विज्ञान भारती, रात्रि 10:00 एशियाई खेल 2026 की हाइलाइट्स, और रात्रि 11:00 हिंदी में और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

श्रोताओ, शाम 6:05 पर आप रोजाना सुना करते हैं पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम रहता है सुरमई सांझ।

ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित बरेली किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6 बजने को है, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 137 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें बल्ल, नाचन, मंडी सदर और करसोग विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने बल तहसील में आईपीएच उपमंडल रिवॉल्सर के तहत अनेक बस्तियों के लिए करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी उठाऊ जलापूर्ति योजना का उद्घाटन भी किया। बल के कंसा चौक में जनसभा में मुख्यमंत्री ने अपना परिवार सुखी परिवार योजना की पात्रता में मनरेगा में एक दिन कार्य करने की शर्त को हटाने की घोषणा की। उन्होंने योजना के तहत आय सीमा को 50,000 से बढ़ा कर 75,000 रुपए करने का ऐलान भी किया। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेरचौक में जल शक्ति विभाग व विद्युत बोर्ड का डिवीजन और डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही पुलिस कांस्टेबलों के 800 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इलाके में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए देने का ऐलान भी किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों व एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यदि मुख्यमंत्री की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो वे इस बारे में पार्टी हाईकमान से चर्चा करेंगी। रजनी पाटिल ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा।
1: हम वेट कर रहे हैं कि उनका प्रस्ताव आ जाए। सीएम साहब प्रस्ताव देने चाहिए। सीएम साहब जब प्रस्ताव देंगे तो मैं हाईकमान को दे दूंगी। देखिए, हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर तो काम करना ही पड़ेगा। आई एग्री। और सभी को एक साथ एक लाइन में एक विचार में लाना पड़ेगा और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जरूर करूंगी। ये जो अनुशासनहीनता है वो हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमारे सभी जिला अध्यक्षों ने ये बात बोली कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारा मानते नहीं, हमारी मीटिंग में आते नहीं। हम एक सीएलपी की मीटिंग बुलाएंगे और उनको बताएंगे, ऐसा नहीं चलेगा।
0: रजनी पाटिल ने बताया कि 28 सितंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कांगड़ा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग ने सभी निर्णय सर्वसम्मति और संविधान के अनुसार लिए हैं, जबकि विपक्षी दल अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तथ्यों और आधिकारिक बयान के बिना ही प्रदर्शन कर रही है, जबकि अपनी हार के लिए उसे आत्मचिंतन करने की जरूरत है।
2: विपक्ष अपनी हार पर पर्दा डालना चाहता है, आत्मचिंतन नहीं करते। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें राज्यों में राज करती रही, तब तो इनको एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती थी, तब इनको इलेक्शन कमीशन में कोई खोट नजर नहीं आता था। लेकिन आज अगर मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण बार बार भाजपा की सरकारें बनती हैं, तो ये कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं आरोप लगाने का। एक आदत सी बन गई है झूठे आरोप लगाने की। इलेक्शन कमीशन ने जितने निर्णय लिए सर्वसम्मति से और मेजोरिटी बोलिए।
0: प्रदेश के अनेक भागों में मौसम ने आज एक बार फिर करवट ली है और अनेक क्षेत्रों में दोपहर बाद से वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आज से 29 सितंबर तक राज्य में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। शिमला, सिरमौर और मंडी जिलों में 27 व 28 सितंबर को भारी वर्षा की संभावना है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि वर्षा से प्रदेश के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मॉनसून सीजन के दौरान इस बार प्रदेश में अभी तक 13% कम वर्षा हुई है।
3: 27 और 28 तारीख को शिमला, सिरमौर के साथ साथ मंडी, किन्नौर, सोलन, इन जिलों में हमें काफी अच्छी बारिश जो है देखने को मिलेगी। और हालांकि जो हमारे पश्चिमी हिमाचल प्रदेश के जिले हैं वहां पे हमें हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश देखने को मिलेगी। इन 3 दिनों में सिरमौर जिले में जो है भारी बारिश की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है 26, 27 और 28 तारीख को, जिसको ध्यान में रखते हुए सिरमौर जिले में जो है हमने 26 और 28 तारीख के लिए येलो अलर्ट जबकि 27 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं पे शिमला और सोलन जिले में भी हमें 27 और 28 तारीख को भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि मंडी जिले में जो है वो हमें 27 तारीख को भारी बारिश देखने को मिलेगी।
0: इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सदाबहार गीत हम आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है सुरमई सांझ।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
4: तो श्रोताओ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपको सुनवाया था आई मिलन की बेला फिल्म से, और इस गीत को आवाज़ें दी थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। इन्हीं के युगल स्वरों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु फिल्म का ये गीत।

0: 0.75 lakh valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: नई सोच नई पहचान अब हर सफर हो और भी शानदार
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध
3: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप
0: टीएनसी स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ नेक्सा अपग्रेड विद एक्सक्लूसिव ऑफर्स अक्रॉस द नेक्सा रेंज
1: मीट द Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh, valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
6: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: सुरमई सांझ सदाबहार गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मौसम में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाए और आपका दिल बिना किसी वजह से मुस्कुराने लगे, जैसे हवाओं ने कानों में आकर कोई राज कह दिया हो। जब दिल पर किसी का जादू चल जाता है तो मौसम चाहे कोई भी हो, दिल में सिर्फ बहार का ही महीना रहता है। आइए आज हम आपको सुनवाते हैं सुनहरी यादों के उसी सुहाने सफर में जहां दिल पर काबू नहीं रह पाता है। बंबई का बाब फिल्म से लिया गया ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में।

हावड़ा ब्रिज फिल्म से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में और किशोर कुमार की आवाज़ में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मन चली का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुरमई सांझ यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां।

सभी किसान व बागबान भाई बहना जो आज इस कार्यक्रम च तुहाड़ा स्वागत और मेरा नमस्कार। तो भाई बहनों अज दे इस कार्यक्रम च वैसे तो हर रोज़ मौजा ग्राई दिया कार्यक्रम च खूब सारी जानकारी भी दिंदे कन्ने गलबात भी करदे हैं तो अज भी कुछ जानकारी कुछ मनोरंजन तुहाड़ा करना है तो सब तो पहले शुरुआत करदे हैं इस लोक गीत दे कन्ने।

0: तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
1: हाँ, वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
0: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं। ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
2: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa. तो एक बार फिर स्वागत है किसान बागवान भाई बहनों थोड़ा मौजा ग्राइंदियाँ कार्यक्रम च। तो आज हाँ गल करनी कि अल्पसंख्यक ताई जोड़े सरकारी योजनाएं हैं ना उन्होंने बारे च, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ताई चलाई गई योजनाएं हैं ना, इन्हों का मकसद यानी उद्देश्य जड़ा ऐसा है कि लोगों शिक्षा, रोज़गार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के बेहतर अवसर देना जड़ा सा उद्देश्य है। सरकार दी महत्वपूर्ण योजना है ना पीएम विकास योजना। इस योजना के तहत युवा जड़े हैं उन्हें अलग अलग कई तरह दी काम जड़े ने तिना दा प्रशिक्षण दिता जांदा, जैसे कि सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, ब्यूटी पार्लर और रोज़गार ने जुड़े जड़े भी कौशल है ना उन्हों का। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोज़गार या फिर स्वरोजगार शुरू करने च भी उन्हें सहायता दी जाती। महिला की गल करन तां उन्हां ताईं विशेष अवसर जड़े मौके हैं सह उपलब्ध किए जाते। कई जगह पर महिला जड़ियां ने तेने स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूह और छोटे व्यवसाय शुरू करने वास्ते तेने ओ प्रशिक्षण दिता जांदा। इस ते सह अपने परिवार की आय बढ़ाने च मदद भी कर सकदियां और आत्मनिर्भर भी बन सकदियां। तो होर भी इस विषय पर गल करके थोड़ी देर के बाद पहले सुनते हैं एक लोक गीत।

0: तो किसान साथियों, असां गल करा दे अज मौजां ग्राईंदियां कार्यक्रम च, तां हुण अहां अज तुहांजो सुनवाणी है इक भेंट वार्ता उन्नत किसान कन्नै कीती गई।
1: करदे हैं मेरे कन्नै इक उन्नत किसान करदे न इन्हां कन्नै गलबात। राम राम जी।
2: राम राम जी।
1: जी तुहां दा नां?
2: बोधी सिंह।
1: कन्नै ग्राएं दा नां?
2: एक पनेरखड़।
1: पनेरखड़ जमानाबाद।
2: जमानाबाद बोलना।
1: कन्नै ब्लॉक तुहां दा?
2: कांगड़ा।
1: बोधी सिंह जी, तां तुहां खेतीबाड़ी करदे हैं?
2: हां जी हां जी हां जी।
1: किन्नी की जमीन है तुहां वाल?
2: सारी जमीन है, दो कुमार।
1: ते सारी खेती करने काबिल है?
2: खेती करने काबिल है सारे।
1: अच्छा, क्या क्या बांधे कमांदे?
2: बांधे धान, बांधे गाय, घाओ बांधे,
1: बाकी सब्जी वगैरह?
2: सब्जी लगांदा मैं। अच्छा। सब्जी हां लगांदे।
1: हां जी, जियां इब्बे कदे फसल धाना दी?
2: फसल खड़ी है सारे।
1: कौन बीज लगांदे धाना दा?
2: ए गुलाबो।
1: हां जी।
2: 834।
1: अच्छा अच्छा। देखा वे एक दो किस्म अगर हां लगाईया होना, कई बार क्या होंगे कि एक आधी किस्म कोई कुछ बारी पैदावार घट ही भी आती, तो उतनी जड़ी सह जड़ी भरपाई है दुई दुई किस्म हां जो करी जाती है ना। अच्छा, यानी कि बाहर ते लैंदे बीज है ना, सब्जियां भी बाहर लैंदे। जियां इससे बाद गल करते हैं खाद दी, खादा क्या?
2: खाद देसी खाद बनदी सारे।
1: अच्छा, बाकी यूरिया वगैरह
2: नहीं? नहीं नहीं।
1: देखा बिल्कुल जी, हां बोलते हैं कि बाकी गल भी है कि देखा आए दिन बीमारियां वधा कर दियां
2: वो दिन पर दिन। हाँ,
1: हाँ, अगर एक ही घर देखा अगर पांच ते छे मेंबर भी अंदर ना विच, मैं नहीं समझता कि कुसी को, कोई बीमारी नहीं होती है ना।
2: 90% बॉय निर्भर है दवाई पर।
1: हाँ जी।
2: 10% कोई होगा जो खरा होगा।
1: हाँ
2: हाँ जी। ना पत्थरी ऑपरेशन हो जाए करना, शुगर थी।
1: हाँ जी
2: ठीक है।
1: हाँ जी हाँ जी।
2: 74 साल लगे।
1: अच्छा अच्छा। देखा भाई यहाँ मैं देखा करता कि उम्र दे इतने तकाजे विच भी जड़ा सा तो हाँ देखा बिल्कुल जिस ये बोलते ना हट्टे कट्टे ना कहना इतनी जमीन जड़ी से तो हाँ बाई हो ना।
2: भाई, भाई, भाई।
1: अच्छा, तो इससे पहले जी तो हाँ नौकरी वगैरह करते है?
2: नौकरी भी करनी, जिम्मेदारी थमी ही मैं सारी।
1: अच्छा,
2: 8-9 ठार पाली हड़ी में।
1: अच्छा, डंगरे दे?
2: हाँ दू जाने।
1: अच्छा,
2: ये तो लोग के बच्चे बच्चे लोग को है।
1: हाँ जी,
2: इतना काम कितने?
1: अच्छा, तो नौकरी कुछ विभाग चे कितनी?
2: मैं वन विभाग चे।
1: कितना अरसो हुई है रिटायर आयो?
2: मैं 2014 चाहे रिटायर।
1: अच्छा, 74 साल तो हाँ दी उम्र हुई है ना?
2: लग गया 74 में।
1: यानी कि जिस दौर में तो हाँ जी दिखा नौकरी कितनी तो 3 दिन जितनी सड़क वगैरह भी नहीं बनी।

0: बूटे लगाने चील लानी खैर लाना
1: हां जी ते बी वगैरह किया करदे हे कट्ठा
0: दा बी खैर दा खैर हुंदे ते ते फलियां होनी
1: हां
0: ते सै खैर
1: आपू ही करना है कट्ठा अच्छा
0: मैं तो मेले बिंदे हां
1: जी हां जी अच्छा यानी कि तुहां जे पूरा अनुभव है इ नर्सरी पर भी रही हो किया पौधा तैयार करना है
0: सब कुछ
1: पशु क्या क्या पाले तो घर है
0: पशु जनाब एक गाय है
1: दो दिन दी इस वेले सोने वाली है अच्छा हाँ देखा भाई हाँ ठहरे किसान कना अगर अहाँ वाल एक अपनी एक घर एक अद्धी एक गा तो होना जरूरी है ना
0: जरूरी है
1: क्योंकि दूध अगर घरे का चाहिए भी अगर पूरा हो जाता ना दिखा ही की करा अगर दिने दी चार चार पांच पांच बारी चाह भी बना कर दी था इतना प्योर दूध कुतु मिलना ना
0: नहीं मिलना
1: कना अपने घरे का दूध दही है छाह बनाई लिया खोआ बनाई लिया पनीर बनाई लिया दही खाई लिया ना कई बार जी कोई खेती के ऐसे कैंप लगते कोई ट्रेनिंग चल दी तो भी कुछ सिखलाई वगैरह ले जी रिटायर होने के बाद यानी कि जड़ी तुम खेती करते आए थे अपने तजर्बे करना जड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी
0: पहले देसी धान लाते हैं तरह तरह के धान हुई तरह तरह के बीज हुई
1: दिखा हूँ तो खेती भी जी बिल्कुल जिस यहाँ बोलते हैं आधुनिक हुई हूँ दिखा जी इतने सारे जिया कोई दवाइया आई पहले जी धान की निदाई करते हैं
0: और बटाड़ करते हैं इतों बटाड़ करते हैं निदाइया करते हैं एक एक पट्टिए हैं जो छे छे सत सत दिन लग जाते घाय बीन दे फिर पारनिया देनी पारनिया रखी ही बलद पारनी देंगे हूं तो ट्रैक्टर रखे ट्रैक्टर बाद बस
1: हाँ। पहले दांद रखे है
0: और मंजल दो दो जोड़ी ही
1: अच्छा
0: और मैं दांद रखे
1: जी जमाना बदलोया था दिया दिया ट्रैक्टर आई है ना
0: टाइम टाइम हूं अह गोभी लाते
1: हाँ जी
0: 250-300 बूटा लाना हो
1: अच्छा
0: गुड गुडाई करनी हाँ पालक शर्मा सब लानी बेची भी लेंदे
1: हां तो देखा भाई तोहां जो ता जियां ये कांगड़ा बाजार नेड़े लगदा होना ना
0: हां
1: कह हरी वारी सब्जी ओहे ते घर द्वार ही बिकी जंदी
0: घर द्वार ले जंदे हां जी ते घर ले जंदे
1: हां तो जेड़ा ये इलाका है तो सिंचाई की करदे खेत
0: ए कुल्ला ना सर ए मोटोरे दी कुल्ला होंदी ना
1: हां जी यानी कि पकियां ना कुल्ला ना
0: पकियां कुल्ला ना पहले होनी ही कच्चियां
1: अच्छा
0: पहले नहीं बड़ा हुन तक दिन रात क्या फर्क है आ मोटोर होना ना
1: हां जी
0: कारण पानी इत पुजी जंदा
1: अच्छा
0: एकदम हुन हटो बटा भी नहीं देओ
1: हां जी
0: हुन कुल्ला बणी है
1: ना देखा पानी दा खेती दा इया बड़ा जरूरी हुंदा है अगर पानी है ता हां कुछ भी फसल उगाई सकदे ने ना तो जियां इबे ता बरखा भी खूब होई है
0: बड़ी बरखा
1: कुल्ला पानी खरा हुंदा रिया होना
0: ना हुन चले पानी और बड़ बड़ चले
1: अच्छा जिया कुल्ला दे कोण से दिख सुन कोण करदा कुल्ला दी
0: हां अदलापुर ने से लग गए
1: अच्छा
0: जमाना वाले लग गए जमाना वाले साडा कुल ही एक
1: हां जी
0: फिर जल कोई बड़ा कम पी जाता है
1: हाँ जी
0: ग्रां दे जांदे काम करना
1: अच्छा
0: किट्ठे होके सारे जाना फिर है रात बरात लाना पौंदी हां जी पति सेड़ना पौंदे राती जाना पौंदा
1: हां जी
0: कोई एमरजेंसी हो जाने तो उंदी दिन पानी नहीं मिलदा
1: हां जी
0: तो एमरजेंसी च हां जी पानी राती मिलदा
1: फिर अच्छा अच्छा
0: ये लास्ट ग्रां साडा म्यालू कन्ने पनैकड़
1: म्यालू
0: साडे पनैकड़ी ते थल्ले म्यालू है
1: हां जी
0: हां राती लांदे कई दिन जल जी खुल्ला पानी होना है
1: हां जी
0: तां नहीं
1: अच्छा
0: अपना अपना सेड़ा
1: का देखा चलो हलवाइया चलो पौंदियां ने फसल बीजने टाइम तो पानी दी बड़ी मार मार
0: बड़ो मार में समझो मिनट सेकंड पानी आंदा कोई टाइम खाता टाइम टाइम दी गल हुंदी
1: कने के वरी इया भी हुंदा के के ते घर सुत्ते रह जंदे कने के भी आ गए पटियां
0: सेड़ी जंदे बस ऐसा हो
1: बुद्धि सिंह जी इस ते बाद गल करदे ने कि जड़ी तुहां इतो खेतीबाड़ी करदे आ ने तुहां दा जेड़ा इलाका है इतो कोई फसल जो उजाड़ वगैरह ते नहीं है कुछ
0: उजाड़ और बंदर सूर
1: हां जी
0: गूंद गाई
1: अच्छा
0: ये बढ़िया गूंद गाई बड़ी मत
1: अच्छा
0: ये जंगली तो नहीं पार वारे टप्पी होनी है
1: हाँ जी
0: ये पेठी सारे इस सूर रहते इससे परला पर है मान जी दरिया पौंदा
1: हाँ जी
0: इस पास तो बड़े बड़े सूर सूरों की बड़ी बड़ी बीमारी है
1: अच्छा
0: बहुत
1: जी तो हाँ इस अपनी जमीन में जी तार बंदी नहीं की है कोई बाड़ बंदी वगैरह कुछ
0: और जनाब कर दे तन लोग किट्ठे होंगे तन
1: हाँ
0: कोई बोलता कोई चुआनी वाला कोई ठाणी वाला
1: थोड़ी ये बड़ी बड़ी जड़ी समस्या दिखा भी जमीन जड़ी किठिया ना चार पटियां कुछ की ने छे कुछ की नहीं ने तो सारे अगर अगर इकट्ठे
0: हो सारे लगा ना ता उस भी
1: सस्ता भी हो जाना काम
0: सस्ता भी हो जाना।
1: बुद्ध सिंह जी आहा दी जड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है ना जिन वाल दिखा अपनी खरिया खुली जमीन है ना।
0: हां जी हां जी
1: उस नौजवान युवा पीढ़ी जदों हां क्या सनेहा देना चाहेंगे कि सब भी किया जड़ा सा अपना कारोबार खेती जो करी के चला सकन
0: जी हां कितनी खेतीबाड़ी तियां करन हां ते

0: हाँ जी, आप ये है कि अपनी जमीन का जोड़ा सा खाली मत छड़ा ना।
1: मत खाली मत छड़ा
0: हाँ जी
1: नाज गा कि
0: हाँ जी बिल्कुल
1: आने वाला टाइम फाके मर गए
0: हाँ जी हाँ,
1: नहीं
0: क्योंकि महंगाई पता कर
1: दुनिया
0: दी
1: ये
0: है।
1: दिन पर दिन बढ़ रही है।
0: देखा अगर दुए वहां अगर हाँ अगर इन्हें जंगली जानवरों से डर हाँ डरी जाएंगे तो इन्हें तो घर भी आई रहना
1: वो
0: है
1: घर ही आ रहे जनाब वो घर ही आ रहे
0: हाँ।
1: घर ही आ रहे
0: तो कुल मिलाएगी ये हाँ बोली सकते हैं ना कि मेहनत करा
1: वाह
0: कने मेहनत फल जरा सा हमेशा जरा सा
1: मीठा
0: मिठा
1: होगा
0: होता है
1: बस
0: ना
1: बस बस सही
0: जी।
1: है
0: बुद्धि सिंह जी तो हाँ
1: ओके
0: अपने अनुभव खेतीबाड़ी दे अहाँ कन्ने साझा किते अपना कीमती समय तो हाँ अहाँ जो दिता तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।
2: तो किसान भाइयों तुसा सुनी उन्नत किसान बुद्धि सिंह ने किसान मित्र दी भेंट वार्ता। हुण आ सुनदे आ ना एक संदेश।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa. ते अज दा मौजा ग्राईं दा कार्यक्रम जिहड़ा है इत्थों ही खत्म हुंदा। अनुमति दिया अच्छा जी जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंदिया। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को है, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सरकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसीनेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री S. जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Election Commission today said that booth-level officers or BLOs will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision or SIR to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The decision was taken during a meeting held by the Election Commission in New Delhi. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by the Electoral Registration Officer. It said that hearings will be conducted only in exceptional circumstances, preferably through online mode. The Commission also said that if a hearing is required, the elector may authorize any adult member of their family to appear on their behalf. SIR has already been completed in 20 states and UTs, including Bihar and West Bengal. The Commission reiterated that the order for the SIR issued for all the states and UTs with the unanimous approval of the Commission. The Commission said that any person whose name has been left out during SIR and wants to include their name can apply to the concerned Electoral Registration Officer. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today launched the IIT Madras Unicorn Venture Fund at the IIT Madras Alumni Meet Sangam in Bengaluru today. Interacting with the audience, Ms. Sitharaman highlighted India's transformation from a fragile five economy to the world's fastest growing large economy, attributing it to structural reforms, institutional strengthening, and targeted policy measures. She also released the book Cashless Nation, How UPI Changed the Nation, authored by Dr. Santhan Paul and B. Sambamurthy. The fund, launched by IIT Madras in partnership with Unicorn India Ventures, will provide 5 to 20 crore rupees to early stage startups. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, today laid the foundation stone for a 150 tons per day capacity e-methanol plant at Deendayal Port Authority in Kutch district. Addressing the gathering, Mr. Sonowal highlighted that the commencement of this plant will create numerous employment opportunities across the country. The 207th birth anniversary of Pandit Ishwar Chandra Vidya Sagar is being observed across Tripura with various programs along with the rest of the country. Addressing a tribute program in Agartala today, organized by the Directorate of School Education and the Information and Cultural Affairs Department,

इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जो

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
6: आकाशवाणी शिमला के किसान वाणी श्रोताओं को हमारा
7: नमस्कार।
6: किसान श्रोताओं, किसान वाणी के आज के संक को लेकर मैं हूं रविंदर वशिष्ठ
7: और मैं हूं शिवरंजन। किसान श्रोताओं, किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार व शनिवार को संध्या 7:10 से 7:45 तक प्रसारित किया जाएगा। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से रिले किया जाएगा।
6: तो शिवरंजन, क्या कुछ आप लेकर आए हैं आज की संक में हमारे किसान बागवान श्रोताओं के लिए?
7: किसान भाइयों, आज काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे वो है पत्ती विश्लेषण का महत्व। करवाएंगे मनोरंजन आपका लोकगीत से और सुनवाएंगे आपको एक जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी। विषय रहेगा मिट्टी परीक्षण। बातचीत में भाग लेंगे डॉक्टर समीर शर्मा और उनसे जानकारी हासिल करेंगी दिशा। और किसान भाइयों, कार्यक्रम के अंत में देंगे जानकारी आपको कल के आकर्षण की भी।
6: जी, तो बात कर लेते हैं किसान बागवान श्रोताओं पत्ती विश्लेषण की। किसान बागवान श्रोताओं, फलदार पौधों की पत्तियों के विश्लेषण से अर्थ है पत्तियों में स्थित पोषक तत्वों की मात्रा जानने के लिए पत्तियों के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण करना। इसके बाद इसी प्रकार के दूसरे पौधों के साथ जिनमें पोषक तत्वों की ठीक स्थिति हो, इस विश्लेषण की तुलना भी की जाती है। इसके द्वारा फलदार पौधों में पोषक तत्वों के अभाव और इनकी वर्तमान स्थिति का पता भी लगाया जा सकता है।
7: जी,
6: इस प्रकार पत्ती विश्लेषण से पौधों के लिए उर्वरकों की उचित मात्रा प्रयोग करने के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है।
7: जी किसान भाइयों, विश्लेषण के लिए पत्तियों के नमूने उद्यान विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा बागवानों के सहयोग से इकट्ठे किए जाते हैं। इस प्रकार इकट्ठे किए हुए नमूने प्रयोगशाला को भेज दिए जाते हैं, जहां पर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा जानने के लिए इनका रासायनिक विधियों द्वारा विश्लेषण भी किया जाता है। किसान भाइयों, बात करें अगर हम पत्तियों के नमूने लेने की विधि की, तो पत्ती विश्लेषण विधि की सफलता पत्तियों के नमूने एकत्रित करने की विधि, सही विश्लेषण और परिणामों की सही तौर पर व्याख्या करने पर निर्भर करती है। अनुचित विधि द्वारा एकत्रित किए गए पत्तियों के नमूनों का विश्लेषण करने से न केवल समय ही व्यर्थ होगा, बल्कि ऐसे परिणामों के आधार पर उर्वरकों की सिफारिश करने से बागवानों को हानि भी हो सकती है। इससे तो बेहतर होगा कि ऐसे नमूनों का विश्लेषण ही नहीं करवाया जाए।
6: बात कर लेते हैं किसान बागवान श्रोताओं कि पत्ती विश्लेषण के लिए नमूने लेने के लिए पौधों के चयन के लिए क्या कुछ एक बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। किसान बागवान श्रोताओं, बागीचों के जिस भाग से नमूना लेना हो वहाँ पौधों की स्थिति सामान्य होनी चाहिए।
7: जी,
6: इसके अलावा बागीचे की सामान्य अवस्थाओं जैसे कि भूमि की उपजाऊ शक्ति, मिट्टी की बनावट, पानी का निकास, स्थलाकृति, बागीचे में किए जा रहे भूमि प्रबंध कार्य, पौधों की कांड छांट, खादों का प्रयोग इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बगीचे को विभिन्न खंडों में भाग दें और प्रत्येक से एक नमूना ले लें। अगर खंड में एक से अधिक जाति के फलों के पौधे हों तो इस अवस्था में विभिन्न फलों से अलग अलग पत्तियों के नमूने लिए जाने चाहिए।
7: जी,
6: इसके अलावा पत्तियों के नमूने रोगग्रस्त पुराने और जख्मी पौधों से न लें। साथ ही साथ पौधों की विभिन्न किस्मों के नमूने अलग अलग रखने चाहिए।
7: जी किसान भाइयों, खंड में किसी एक विशेष प्रकार से ही नमूने के लिए पत्तियों का चयन करें। यदि बगीचे में पौधों में आपसी अंतर अधिक है तब नमूने लेने के लिए तिरछे चलकर 2 से 4 पत्तियां प्रति दूसरा पौधा एकत्रित करें। यदि पौधों में आपसी अंतर कम हो तो बाहर के पौधों की कतारों को छोड़ दें। बीज की कतारों में आड़े तिरछे घूमकर नमूने के लिए डंठल समेत नीचे की ओर खींचकर पत्ती को आप तोड़ लें।
6: जी, और पत्ती विश्लेषण करवाकर उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग कर आप बगीचों से अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं।
7: जी,
6: अब बात कर लेते हैं किसान बागवान श्रोता नमूने लेने के लिए पौधों के चयन के लिए कुछ एक सावधानियां, कुछ एक बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बगीचे के जिस भाग से नमूना लेना हो वहाँ पौधों की स्थिति सामान्य होनी चाहिए। साथ ही साथ बगीचे की सामान्य अवस्थाओं जैसे भूमि की उपजाऊ शक्ति, मिट्टी की बनावट, पानी का निकास, स्थलाकृति और बगीचे में किए जा रहे भूमि प्रबंध कार्य, पौधों की कांट छांट, खादों का प्रयोग आदि को ध्यान में रखते हुए बगीचे को विभिन्न खंडों में बांट देना चाहिए।
7: किसान भाइयों, पत्तियों के नमूने रोगग्रस्त, पुराने और जख्मी पौधों से आपने नहीं लेना है। पौधों की विभिन्न किस्मों के नमूने अलग अलग करके आपने लेने हैं। खंड में किसी एक विशेष प्रकार से ही नमूने के लिए पत्तियों का चयन करें। यदि पौधों में आपसी अंतर अधिक है तब नमूने लेने के लिए तिरछे चलकर 2 से 4 पत्तियां प्रति दूसरा पौधा एकत्रित करें। यदि पौधों में आपसी अंतर कम हो तो बाहर के पौधों की कतारों को छोड़ दें और बीच की कतारों में आड़े तिरछे घूमकर नमूने के लिए डंठल समेत नीचे की ओर खींचकर पत्ती किसान भाइयों आप तोड़ दें।
6: किसान बागवान श्रोताओं, यदि हम बात करें पर्णपाती फल पौधों जैसे कि सेब, चेरी, नाशपाती, आड़ू, पलम, खुमानी, बादाम आदि की, तो इनसे पत्तियों के नमूने इकट्ठे करने के लिए कुछ एक बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इन पौधों से पत्तियां उसी मौसम में पैदा हुई टहनी के मध्य भाग से 15 जून से 15 अगस्त तक आप ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो प्रदेश के निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों में नमूने लेने का कार्य 15 जून से आरंभ कर सकते हैं, जबकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 15 जुलाई के बाद ही आपको नमूने लेने का कार्य शुरू करना है।
7: जी, और किसान भाइयों, अगर हम बात करें नींबू प्रजाति फलों की, नींबू प्रजाति के पौधों से बसंत ऋतु में आई शाखाओं से 5 से 6 महीने बाद पत्तियों के नमूने एकत्रित किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये समय अगस्त और सितंबर का रहता है। टहनियों के बीच का पत्ता ही नमूने के लिए लिया जाता है। ये पत्ते उन टहनियों या शाखाओं के लिए जाते हैं जिनमें फल ना लगे हों। नींबू प्रजाति के पौधों में प्रायः वर्ष में कई बार कोंपले आती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि नमूनों के लिए ली गई पत्तियां फरवरी मार्च में आई टहनियों के मध्य भाग से ही ली जाएं। इसके लिए फरवरी मार्च में उगी नई फल ना देने वाली शाखाओं पर रंग से चिन्ह लगा लें। अगस्त सितंबर में पत्तियों व शाखाओं की छाल के रंग के आधार पर इस प्रकार की शाखाओं को पहचाना जा सकता है। फरवरी मार्च में निकली फल देने वाली शाखाओं के पत्तों की तुलना फल ना देने वाले शाखाओं के पत्तों को देखने मात्र से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अनुभव की आवश्यकता रहती है।
6: जी, अब बात कर लेते हैं किसान बागवान श्रोताओं आम और लीची के नमूने लेने की विधि की। किसान बागवान श्रोताओं, जब आम में खूब फूल आया हो तो उस समय टहनियों के मध्य भाग से नवीनतम परिपक्व पत्ती लेनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि पत्ती केवल उन्हीं शाखाओं से लें जिन पर फूल न लगे हों। प्रदेश में ये समय मध्य मार्च से मध्य अप्रैल तक चलता है।
7: जी,
6: बात कर लेते हैं अंगूर की। किसान बागवान श्रोताओं, फलदार शाखा की सबसे नई परिपक्व पत्ती का केवल डंठल लें, क्योंकि इस फल में पत्ती के दूसरे भाग की आवश्यकता नहीं होती। ये जरूरी है कि नमूने ऐसे भाग से लिए जाएं जहां खूब धूप लगती हो। नमूने आप जुलाई के प्रथम सप्ताह से अगस्त के मध्य तक ले सकते हैं।
7: जी, और किसान भाइयों, अगर हम बात करें अमरूद की, तो अमरूद में फल ना देने वाली उसी मौसम में पैदा हुई शाखा के अंत से परिपक्व पत्तों की जोड़ी उस समय ले जब उनकी बढ़ोतरी बंद हो चुकी है, और उसके बाद उस पत्ती को लेकर के आप इसका पत्ती विश्लेषण करवा सकते हैं। बात करें अगर हम जैतून की, तो जैतून का पत्ती विश्लेषण करने के लिए उसी वर्ष में पैदा हुई परिपक्व पत्तियां टहनी के मध्य भाग से दिसंबर जनवरी में आपने ले लेनी है।
6: जी, किसान बागवान श्रोताओं, ये तो बात हुई जानकारी की कि किस प्रकार आप पत्ती विश्लेषण करवा कर एक अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। अब निश्चित रूप से रोजाना की तरह आप सभी को इंतजार होगा मनोरंजन का, तो आइए हम और आप सुनते हैं कृतिका तन्वर की आवाज में ये लोक।

0: किसान भाइयों, ये तो सुना आपने लोकगीत। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में समय हो चला है जानकारी पूर्ण बातचीत सुनवाने का, जिसका विषय रहेगा मिट्टी परीक्षण। और बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर समीर शर्मा और उनसे जानकारी हासिल कर रही हैं दिशा। आइए सुनते हैं।
1: कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर समीर शर्मा। सबसे पहले तो समीर शर्मा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आज समीर

0: शर्मा जी हमें जानकारी देंगे मिट्टी परीक्षण के बारे में। समीर शर्मा जी, जो मिट्टी परीक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो मिट्टी परीक्षण करना क्यों जरूरी होता है और इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं?
1: किसान भाइयों, जैसे आपको पता है, मिट्टी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पौधे पोषाहार प्राप्त करते हैं
0: जी।
1: किसी फसल की जो निश्चित प्रजाति को जब भी अलग अलग खेतों में उगाया जाता है तो उसकी उपज में अंतर पाया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सभी मिट्टियों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग उर्वरक के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिससे उसकी उपज में अंतर पाया जाता है। इसलिए मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग की आवश्यकता है, अन्यथा मिट्टी और पौधों में पोषक तत्वों के असंतुलन की आशंका बढ़ जाएगी, जिससे पैदावार पर उसका बुरा असर पड़ता है।
0: जी,
1: यही कारण है कि उर्वरकों का प्रयोग परीक्षण के आधार पर होना लाभकारी है। मिट्टी परीक्षण से खेत की मिट्टी के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों का निरीक्षण करना और उसकी उपजाऊ शक्ति का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करना है। मृदा परीक्षण से खादों अथवा आवश्यक जो भूमि सुधारकों की उचित मात्रा का पता लगता है। ऐसा करने से किसान अपनी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाए रख सकता है और पैदावार भी बढ़ा सकता है
0: जी।
1: और इसका जो मुख्य उद्देश्य हमारा है, मिट्टी की जांच से हमें पता चलता है कि मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, और इसके अलावा पोषक तत्वों के वर्ग के आधार पर हम खादों की मात्रा की सिफारिश कर सकते हैं, जो कि एक मेजर हमारा एक फैक्टर है मिट्टी परीक्षण का। और इसके अतिरिक्त मिट्टी की जांच से उसकी अम्लता या लवणता का पता चलता है
0: जी,
1: जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि उसमें खाद कितनी डालनी है, चूना कितना डालना या जिप्सम कितना डालना है।
0: ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि मिट्टी परीक्षण से जो है हमें पता चल सकता है कि उसमें हमें किस तरह का चूना, कितना खाद प्रयोग करना है।
1: जी जी।
0: देखिए, जो आजकल की मिट्टी है उसकी जो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें
1: जी, जी, जी।
0: तो वो दिन प्रतिदिन उसमें गिरावट आती जा रही है। तो प्रदेश में मृदा स्वास्थ्य गिरावट के मुख्य कारण कौन कौन से हैं?
1: हाँ जी, देखिए, जैसे आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे किसान भाइयों के जो हमारे खेतों में प्रॉब्लम आ रही है कि जो मिट्टी की जो उसकी जो स्वास्थ्य वो बहुत ही डे बाय डे कम होती जा रही है
0: जी।
1: तो इसके जो कुछ मुख्य कारण है, जैसे एक रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग, कि कई किसान भाई ऐसा जो या तो खाद ज्यादा डाल देंगे या कम कर डाल देंगे। इसके साथ साथ जो कार्बन तत्वों का अधिक कम होना। तीसरा है, कई बार हम ऐसा देखा है किसान भाई जो फसल कटाई के उपरांत जो फसलों को जो जड़ें होती हैं वो कुछ उनके जो कंटेंट होते हैं वो जला देते हैं, उससे भी फसल कई बार फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ हमारा एक मेन कंपोनेंट है फसल चक्कर, जिसमें हम फसलों को बदल बदल के लगाते हैं और उसके साथ जैसे हरी खाद का डालते हैं, जैविक खाद भी डालते हैं, उसका भी कम होना इसका एक मुख्य कारण है। इसके साथ साथ फसल चक्र में हमारी दलहनी फसलें हैं उसका भी एक समावेश होना बहुत ही जरूरी है। आज की डेट में किसान भाई कई बार हमारी दो ही फसल लेते हैं, जैसे धान होगी, मक्की होगी या गेहूं होगी। तो मेरा किसान भाइयों से भी अनुरोध रहेगा कि इनके साथ साथ इन दलहनी फसलों का भी समावेश किया जाए। इसके साथ साथ एक बायो फर्टिलाइजर आते हैं, हमारी जीवाणु खाद आती हैं, किसान भाई उनका भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, अदरवाइज उनके जो कम प्रयोग से भी हमारा जो स्वास्थ्य गिरावट आ रही है। इसके साथ साथ नमी संरक्षण के प्रति किसानों को जागरूक न होने की कमी के कारण भी कई बार हमारे उर्वरक खाद्य हैं वो ऐसे रह जाती हैं, तो ये भी एक मेन फैक्टर है इसका।
0: जी, देखिए, आपने मुख्य जो एक कारण बताया है मृदा स्वास्थ्य की गिरावट का, वो है कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो या तो कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग कर देते हैं उर्वरकों का, या फिर उर्वरकों का वो कम प्रयोग कर देते हैं। इसकी एक उचित मात्रा होनी चाहिए
1: जी, और ये तभी है अगर आप मिट्टी परीक्षण कराएंगे
0: जी,
1: तो जो हमारे जो अफसर लगे हैं तो वो उसका मिट्टी परीक्षण के बाद उसका बता सकते हैं कि इस खेत में इतनी क्वांटिटी की उर्वरक चाहिए और इतनी इतनी कम चाहिए, इतनी ज्यादा चाहिए, तो सब उससे पता लग सकता है।
0: जी, समीर शर्मा जी, मिट्टी में हमारे कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, तो जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं और इनका पैदावार बढ़ाने में कितना और क्या योगदान रहता है?
1: जी देखिए, जैसे मनुष्य को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन आदि की व्यवस्था अधिक मात्रा में रहती है, उसी तरह पौधों में विकास के लिए पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही जरूरी है
0: जी।
1: इसके लिए हमारे जो आज की डेट में 16 पोषक तत्वों की व्यवस्था रहती है, जो कि अलग अलग तरह से उसको डिनोट किए गए हैं। इसमें हमारे एक पहला आता है गैर खनिज पोषक तत्व, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन्हें पौधे हवा और पानी से अवशोषित करते हैं ऑटोमेटिकली। इसके अलावा एक हमारे प्रधान खनिज पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। ये सबसे ज्यादा प्लांट्स को सबसे चाहिए होते हैं इनकी क्वांटिटी, और ये हमें फसल के मुकाबले डालने पड़ते हैं। इसके अलावा हमारे एक गौण खनिज पोषक तत्व आते हैं, ये तीन हमारे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और इनकी अवस्था अपेक्षाकृत कम होती है एज कम्पेयर टू जो प्रधान खनिज तत्व हैं। इसके अलावा हमारे एक अनुपोषक तत्व होते हैं, इनकी भी मात्रा चाहिए बहुत ही कम चाहिए होती है, बट अगर नहीं डालेंगे तो कई बार जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो बड़ी कम हो जाती है। तो इसमें मेजर रूप से बोरोन हुआ हमारा, क्लोराइड हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ और जिंक हुआ। तो ये हमारे मुख्यतः 16 तत्व हैं जिनकी पौधों को रिक्वायरमेंट रहती है।
0: जी
1: जी जी,
0: तो यही कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। समीर शर्मा जी, मिट्टी परीक्षण के लिए कुछ उचित समय भी

0: पता होगा
1: जी जी
0: कि उसे कब कब करवाना है
1: जी
0: हमें, तो कब कब हम मिट्टी परीक्षण कर सकते
1: जी हाँ,
0: हैं?
1: जैसे किसान भाई देखिए, जो मिट्टी परीक्षण जो आप नमूना लेंगे वो खेत में आप किसी फसल काटने के बाद कभी भी ले सकते हैं।
0: जी
1: और नमूने ऐसे ले कि वो आपके पूरे खेत का बराबर से भाग पूरा कंपेयर करके कि वो सबका एक मिला जुला नमूना हो।
0: जी
1: और कम से कम किसान भाइयों जो परीक्षण मिट्टी का होना चाहिए वो 3 साल में एटलीस्ट एक बार जरूर करवाएं। और उसके बाद ऐसा कि जो आपकी एक और बात का ध्यान रखें, जब भी मिट्टी की परीक्षण का करवानी हो तो जो आपने खेत की बिजाई करनी है उसे 1 माह पहले उसको लेके अपने निकटतम के किसी अधिकारी को जो हमारे जो ऑफिस में हमारे लेबोरेटरी वहाँ भेजें। और इसके साथ जो है नमूना लेने के बाद अगर आपने खड़ी फसल में भी लेना हो,
0: जी
1: तो कभी ऐसा हो जाता है कि किसान भाई खड़ी फसल से अपना नमूना लेना चाहते हैं तो उसमें भी ले सकते हैं, बट उसमें जो कतारें होती फसल के बीच कतारें जो होती हैं उनसे नमूना लें। और नमूना इस बार लें कि जो पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करता हो। और साथ में उसका जब नमूना लेने के बाद अपना नाम, गाँव का नाम, खेत का क्या क्रॉप लगा, सारा जो डिटेल बना के हमारे जो लेबोरेटरी है वहाँ भेज दें।
0: जी
1: जी जी
0: डॉक्टर समीर शर्मा जी, मिट्टी परीक्षण के लिए खेत से मिट्टी का नमूना कैसे लेना
1: जी
0: चाहिए?
1: हाँ, ये सबसे कंपोनेंट जो एक इसका मिट्रिशन का है कि नमूना हमारा ऐसा हो कि जो मिट्टी का बनावट उत्पादों के आधार पर अपने खेत को बांट लें। उसके
0: जी
1: बाद आप एक जो खेत आपका जो 15-20 जगह पे उससे आप एक निशान लगा लें, और ऊपर जो निशान वाले जगह पे जहाँ उसके आप कोई घास फूस है कोई पत्थर है उनको हटा लें, अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद उस पे अगर से उस खेत का नमूना ले, बट ऐसा देखा कि अगर हमारे जो किसान भाई के पास केवल नहीं होता है तो जो खुरपी होती है
0: जी
1: उसमें एक बी आकार का 6 इंच का गड्ढा करें और उसे एक नमूना लें। और जब आप उसमें 15-20 स्थान पर उसी तरह से एक नमूना लेके, एक एक नमूना जो खेत में 15-20 जगह से लेंगे आप उसको इकट्ठा कर लें और
0: जी
1: उसके बाद उसको अच्छी तरह मिला लें। उसको मिलाने के बाद उसको 4 हिस्सों में बांटें, और 4 हिस्सों में बांटने के बाद उसके 2 हिस्से छोड़ दें और 2 हिस्से रखें। उसके बाद जो 2 हिस्से बचे आपके उनको भी अच्छी तरह से मिला लें और उनके द्वारा से फिर 2 हिस्से बना लें।
0: जी
1: ये जो प्रोसीजर आपको तब तक करना है जब तक आपका सैंपल नीले बोर्ड आधा किलो के आसपास ना रह जाए। जब आधा किलो का सैंपल रह जाएगा तो उसको अच्छी तरह से इकट्ठा करके उसको सूती की थैली में भरें और उसमें अच्छे से लेबल लगा के किसान का नाम, खेत का नाम, उगाई गई फसल का नाम, ब्लॉक इत्यादि के विवरण लेके उसको अच्छे से पैक करके उसको निधि के जो हमारा लेबोरेटरी वहाँ भेज दें। तो इसका
0: जी
1: ये एक मेथड है इसका।
0: जी डॉक्टर
1: जी
0: साहब, ये तो आपने बताया कि हमें कैसे मिट्टी का नमूना लेना
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो मिट्टी का नमूना लेते समय हमें कुछ सावधानियों का
1: जी जी
0: भी
1: हाँ
0: ध्यान रखना
1: हाँ
0: होता
1: ये
0: होगा?
1: सबसे ज़्यादा ये कुछ सावधानी है जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगी जो आप मिट्टी की रिपोर्ट आएगी परीक्षण की वो आपकी नहीं आएगी। सबसे
0: जी
1: पहले जहाँ पे कोई खाद का ढेर लगा है, कोई सिंचाई की नाली है या कोई रसायन आपने इस्तेमाल किया हो, तो किसान भाई वहाँ से कभी भी सैंपल ना ले। उसके साथ साथ जो कई बार आपके खेत में पेड़ भी लगे होते हैं तो
0: जी
1: जो जड़े वगैरह साथ पाई वहाँ से कभी सैंपल ना ले। कई बार किसान भाई अपने रासायनिक खाद एक गली सड़ी खाद एक गोबर डालते हैं वहाँ से भी सैंपल ना लें, क्योंकि वहाँ से सैंपल लेंगे तो वो वहाँ का वो जो बाकी जो खेत की जो मिट्टी उससे डिफरेंट आएगी। और साथ ही जहाँ पर केवल झाड़ी को जलाया हो तो वहाँ से भी
0: जी
1: सैंपल ना लें। इसके बाद हमेशा एक किसान भाई ध्यान रखें कि सैंपल हमेशा ही सूखा लें। हाँ कभी अगर सैंपल गीला भी है तो उसको सुखा लें, बट वो सुखाना छायादार छाया में सुखाना चाहिए, धूप में कभी ना सुखाएं।
0: जी
1: और सुखाने के बाद अच्छी तरह उसको पॉलिथीन के बाद में डाल के लेबोरेटरी भेज दें। तो ये सावधानी है जो मेजर रूप में रखनी पड़ती है।
0: जी ये कुछ सावधानियां बताई डॉक्टर साहब ने जो आपको मिट्टी का नमूना लेते समय ध्यान रखनी
1: जी
0: है। डॉक्टर साहब, मिट्टी की उर्वरकता में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का क्या-क्या महत्व है और इसका क्या उद्देश्य है?
1: देखिए, जैसे उर्वरकों का प्रयोग जो हमारे फसल की अवस्था के अनुरूप नहीं हो पा रहा है, हमारे किसान की आर्थिकी जो हमारी स्थिति है वो इतनी कई बार के किसान बेचारे उतनी नहीं अफोर्ड कर पाते उर्वरकों का इस्तेमाल, तो इसके लिए ये जो एकीकृत पोषक प्रबंधन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस बन जाती है। इसमें किसान भाई जो उर्वरक के साथ साथ जो हमारे जैविक खाद्य हैं, गोबर की खाद्य हैं या कुछ और जीवाणु खाद्य हैं उनका भी उपयोग करें। इससे अगर ऐसा होगा कि जो आपकी जो लागत है जो उर्वरक की वो कम हो जाएगी और
0: जी
1: आपकी मिट्टी का जो इसकी वैल्यू वो भी बढ़ जाएगी। इसका जो फर्क है इसमें पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण होगा, इसके साथ साथ जो हमारा उर्वरकों के असंतुलित अपर्याप्त प्रयोग से होने वाले घातक प्रभावों को कम करने में सहायता मिलेगी और मिट्टी के रासायनिक भौतिक एवं जैविक गुणों में सुधार होगा। इसके साथ साथ किसानों के पास पोषक तत्वों के स्रोत हैं को प्रयोग
0: जी
1: करने के बाद लागत कम करने के भी सहायता मिलेगी। इसके लिए जो एकीकृत पोषक प्रबंधन का बहुत ही ज्यादा महत्व है।
0: जी
1: जी
0: डॉक्टर साहब, मिट्टी की जांच से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में भी हमारे
1: जी
0: किसान
1: जी
0: भाई बहनों को बता
1: हाँ
0: दीजिए।
1: देखिए, मिट्टी जांच के इसमें हमारे जो हमारे मेजर जो फैक्टर एनपीके हुए, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस के अलावा हमारे कुछ और फैक्टर जो हमें प्राप्त, जैसे पीएच है, ये
0: जी
1: पीएच हमारी एक मिट्टी में 7.6.5 6.5 से 7.5 के आसपास चाहिए होती है। अगर आपकी पीएच ज़्यादा होती है तो इससे क्या होता है जो हम खाद डालते हैं उनकी घुलनशील कम हो जाती है और इसका कारण जो हमारे जल की मात्रा वो बढ़ने लग जाती है। तो अगर ये पीएच ज़्यादा होगी तो हम उसको जिप्सम डाल के उसको अच्छी ठीक कर सकते हैं, तो ये इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैविक कार्बन होता है,

0: जैसे जैविक कार्बन अगर कम होगी तो उसका नाइट्रोजन की हमें उसका ज़्यादा रुख डालना पड़ता है, और
1: जी
0: अगर आपको लगता है कि जैविक कार्बन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होता है कि उसमें आपकी जो वनस्पति की बहुत ज़्यादा होगी, दाने कम लेंगे। तीसरा, हमारे जैसे फास्फोर्स है, फास्फोर्स की मात्रा का सही आकलन भी इसके अनुसार किया जा सकता है। जो फास्फोर्स उनको जड़ों को हमारे जो विकास तेज करने में सहायता करता है, और इसके साथ साथ अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है बाय द वे, तो जैसे हमारे कुछ तत्व है जैसे जस्ता हो गया, लोह हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी उपलब्धता कम हो जाती है। ठीक है जी, इसका
1: जी
0: लाइक पोटाश है जी, पोटाश तो उसमें भी अगर आपकी पोटाश की तत्व कम कम हो जाता है बाय द वे, तो उसमें जो हम ये इसमें जो दाने बनने कम हो जाते हैं, और ये जो पोटाश तत्व है ये फसलों गिरने में रोकता है, और अनाज के दानों में अधिक गुदा पैदा करने में अधिक उन्हें सलोड सुडोल बनाता है। इसलिए इनके भी इसका भी एक पोटाश का भी एक अहमियत है। इसके अलावा जो सूक्ष्म तत्व है वैसे तो बहुत ही कम मात्रा में यूज होते हैं, बट अगर नहीं यूज करेंगे तो कई बार क्या होता है जो इनमें कुछ प्रॉब्लम बीमारियां होने से जाती हैं। तो
1: जी
0: ये जो फैक्टर है मेन, ये सब इनकी जाँच के बाद, मिट्टी परीक्षण की जाँच के बाद हमें प्राप्त हो जाते हैं। हर जगह हमारी मिट्टी प्रयोगशाला है। इसके अलावा हमारी 7 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी हैं,
1: जी
0: जो हमारे लोगों के गांव में जाके भी सॉइल टेस्ट करती हैं। हमारा जीपीएस के आधार पे सैंपल ले रहे हैं और
1: जी
0: उनको ऑनलाइन उनको रिपोर्ट दे रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा है, जो हमारा जो मृदा परीक्षण है, इसको को भी हम जैसे कोई सैंपल आता है तो विदिन 60 डेज हमें इसकी रिपोर्ट किसान भाई को देनी पड़ती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और आपने किसान भाई बहनों को मिट्टी परीक्षण के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान बागवान श्रोताओं, अभी आपने सुना एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था मिट्टी परीक्षण। इस जानकारीपूर्ण बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर समीर शर्मा और उनसे अधिक जानकारी हासिल कर रही थी दिशा।
3: किसान भाइयों, जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन करवाने का, तो किसान भाइयों आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये लोकगीत।

0: किसान भगवान श्रोताओं, अभी आपने सुना समूह स्वर में ये मीठा सा लोकगीत। अब समय हो चला है कार्यक्रम को समेटने का, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कार्यक्रम के कल के अंक के मुख्य आकर्षण का।
1: जी किसान भाइयों, कल काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे वो है नींबू प्रजातीय फलों के रोग व निदान आप किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही करवाएंगे आपका मनोरंजन भी और सुनवाएंगे आपको एक जानकारी पूर्ण बातचीत भी।
0: जी तो किसान बागवान श्रोताओं, आज का कार्यक्रम का सफर यहीं तक। अगले अंक में नए विषय पर जानकारी और मनोरंजन के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए,
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग एक

0: 37 करोड़ रुपए की 21 विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। देश व प्रदेश में कल रविवार को खुले रहेंगे सार्वजनिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 10,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्के हिमपात से ठंड बढ़ी, प्रदेश के 8 जिलों में कल भारी वर्षा का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 137 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें बल्ह, नाचन, मंडी सदर और करसोग विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने बल्ह तहसील में आईपीएच उपमंडल रिवालसर के तहत अनेक बस्तियों के लिए करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी उठाऊ जलापूर्ति योजना का उद्घाटन भी किया। बल्ह के कंसा चौक में जनसभा में मुख्यमंत्री ने अपना परिवार सुखी परिवार योजना की पात्रता में मनरेगा में एक दिन कार्य करने की शर्त को हटाने की घोषणा की। उन्होंने योजना के तहत आय सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का ऐलान भी किया। इसके अलावा सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नेरचौक में जल शक्ति विभाग व विद्युत बोर्ड का डिवीजन और डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही पुलिस कांस्टेबलों के 800 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इलाके में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए देने का ऐलान भी किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों व एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं देश की सौर ऊर्जा क्षमता के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में देश की सौर ऊर्जा क्षमता मात्र 2 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 160 गीगावाट हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 50 लाख से अधिक घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 10,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं।
1: 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट थी, आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है।
0: प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से एम्स बिलासपुर तक राज्य पथ परिवहन निगम की सीधी बस सेवा शुरू की गई है और इस समय 10 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में बताया कि इन बसों के माध्यम से राज्य के विभिन्न इलाकों से प्रतिदिन लगभग 1,000 यात्री सफर कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने बताया कि नालागढ़ से रामशहर और बद्दी से बघेरी होते हुए भी एम्स के लिए 2 नई बस सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित प्रदेश दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कुल्लू के उपायुक्त सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति का जिले में प्रस्तावित प्रवास 6 से 8 अक्टूबर तक है। इस दौरान उनका अटल टनल रोहतांग और मनाली के माता हिडिंबा

0: मंदिर का दौरा करने का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि 5 से 8 अक्टूबर तक संबंधित क्षेत्रों में ड्रोन, मानव रहित विमान, पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे और अन्य हवाई उपकरणों को उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है। विकास कार्य ठप्प होने के विरोध में बमसन भाजपा मंडल द्वारा आज टौणी देवी में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें राजेंद्र राणा ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा कि टौणी देवी से सुजानपुर तक सारी सड़कें गड्ढों में बदल गई हैं और इन पर परिवहन निगम की बसें भी बंद हो गई हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि जलशक्ति विभाग के विश्राम गृह, टाउन हॉल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का काम भी ठप्प पड़ा है। उन्होंने कहा कि करीब एक महीने पहले उठपुर में आईटीआई भवन के निर्माण को लेकर विरोध जताया गया था और भुगतान न होने के कारण ठेकेदार भी सामान लेकर जा चुका है। राजेंद्र राणा ने कहा कि अगर एक महीने के अंदर इलाके में सड़कों की हालत में सुधार नहीं हुआ और बंद पड़े काम फिर से शुरू नहीं हुए तो भाजपा बड़ा आंदोलन करेगी। धरने के बाद भाजपा कार्यकर्ता द्वारा राजेंद्र राणा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
1: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
2: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
1: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
3: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज ना करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: बाकी समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी।

0: के बीच बेहतर तालमेल है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यदि मुख्यमंत्री की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो वे इस बारे में पार्टी हाईकमान से चर्चा करेंगी। रजनी पाटिल ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा।
1: हम वेट कर रहे हैं कि उनका प्रस्ताव आ जाए। सीएम साहब प्रस्ताव देने चाहिए, सीएम साहब जब प्रस्ताव देंगे तो मैं हाईकमान को दे दूंगी। देखिए हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर तो काम करना ही पड़ेगा, आई एग्री, और सभी को एक साथ एक लाइन में एक विचार में लाना पड़ेगा और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जरूर करूंगी। ये जो अनुशासनहीनता है वो हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमारे सभी जिला अध्यक्षों ने तो ये बात बोली कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारा मानते नहीं, हमारी मीटिंग में आते नहीं, हम एक सीएलपी की मीटिंग बुलाएंगे और उनको बताएंगे, ऐसा नहीं चलेगा।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कांगड़ा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग ने सभी निर्णय सर्वसम्मति और संविधान के अनुसार लिए हैं, जबकि विपक्षी दल अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
2: विपक्ष अपनी हार पर पर्दा डालना चाहता है, आत्मचिंतन नहीं करते। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें राज्यों में राज करती रही, तब तो इनको एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती थी, तब इनको इलेक्शन कमीशन में कोई खोट नजर नहीं आता था। लेकिन आज अगर मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण बार बार भाजपा की सरकारें बनती हैं तो ये कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं आरोप लगाने का। एक आदत सी बन गई है झूठे आरोप लगाने की। इलेक्शन कमीशन ने जितने निर्णय लिए सर्वसम्मति से और मेजोरिटी बोलिए।
0: प्रदेश के अनेक भागों में मौसम ने आज एक बार फिर करवट ली है और अनेक क्षेत्रों में दोपहर बाद से वर्षा हो रही है। किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों सहित राज्य के कई उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज हल्का हिमपात हुआ है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य के अनेक जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि कल 27 सितंबर को सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 137 करोड़ रुपए की 21 विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। देश व प्रदेश में कल रविवार को खुले रहेंगे सार्वजनिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 10,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्के हिमपात से ठंड बढ़ी, प्रदेश के 8 जिलों में कल भारी वर्षा का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
3: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
4: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
3: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
4: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। विशेष सूचना सुनिए। नवोदय विद्यालय समिति, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, सत्र 2027-28 के लिए देश के प्रत्येक जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं की रिक्त सीटों पर पार्श्व प्रवेश यानी लेटरल एंट्री परीक्षा 10 अप्रैल 2027 को आयोजित करने जा रही हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। विवरण तालिका

0: प्रोस्पेक्टस भी पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार cbseitms.nic.in इस लिंक पर जाकर निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। सूचना समाप्त हुई।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं और ये समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। तो सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत में अल्फाज कम पड़ जाते हैं और फासले बहुत बड़े लगने लगते हैं। ऐसे में दिल चाहता है कि सारी दूरियां मिटा दी जाएं। कुछ ऐसा ही हाल हाले दिल बयां किया है इस गजल में, जिसे अपनी मखमली आवाज से सजाया है उस्ताद गुलाम अली साहब ने। हवा गुजरे न होकर दरमियां से, हवा गुजरे न होकर दरमियां से, मैं इतना पास आना चाहता हूँ, तेरे नज़दीक आना चाहता।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। अब लीजिए सुनिए बडाली ब्रदर्स को।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई। नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई। नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुरदास मान की आवाज में ये पंजाबी लोकगीत।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: नई सोच, नई पहचान. अब हर सफर हो और भी शानदार.
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ.
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स. अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार.
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध.
3: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है. आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप. टीएनसी अप्लाई.
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: नई सोच, नई पहचान. अब हर सफर हो और भी शानदार.
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ.
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स. अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार.
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध.
3: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है. आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप. टीएनसी अप्लाई.
5: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस. और अब हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान को.

नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में गाए इस कलाम के साथ ही आज का विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa. नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस, अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए क्योंकि

0: किस्तों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई। नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ नेक्सा, अपग्रेड विद एक्सक्लूसिव ऑफर्स अक्रॉस द नेक्सा रेंज।
3: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh, valid till 30th September.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.

0: देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: सर फिरोजी, निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
3: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों में जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
4: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
4: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
2: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
5: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
6: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
2: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे

0: संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
1: चाइल्ड प्रोटेक्शन कंसर्न।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदक

0: gold, 12 silver, and 14 bronze. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth-level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Surya Kant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिमदर्शन रिले किया जाएगा।
2: अरे ये सेवराम की दुकान बंद क्यों है?
3: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
4: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
6: अधिक जानकारी के लिए 7649900015 पर संपर्क करें।
7: निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन।
9: श्रोताओं नमस्कार। साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल को अगले वर्ष तक बनाया जाएगा आत्मनिर्भर राज्य। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस की बहाल, हर वायदा चरणबद्ध ढंग से होगा पूरा। हिम ई पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम पोर्टल जारी करने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। पंचायती राज संस्थाओं की कार्यवाही होगी ऑनलाइन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतन सीमा को लेकर लिया बड़ा फैसला, 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई वेतन सीमा। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्वविद्यालयों से प्रदेश की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उन्होंने सोलन में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के एक कार्यक्रम में शैक्षणिक सत्र को संबोधित किया और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है और सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल अगले वर्ष तक आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा।
10: जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने एक निश्चय किया था कि हमारी सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी। यही परिणाम है कि आज हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है और जीत जीती है। 2027 तक हमारा प्रयास है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने, और इस लड़ाई को, आत्मनिर्भर की लड़ाई को लड़ने के लिए अभी हमें बीबीएमबी का जो एरियर है जिससे कि 500 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है, उसका जजमेंट रिजर्व है, उसका इंतजार कर रहे हैं। वाटर सेस का इंतजार कर रहे हैं और शानन प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये जो पानी है यही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगा। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके और सभी प्रकार की आय से तकरीबन 4 से 5 हजार करोड़ रुपया हमने बचाया है।
9: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए प्रदेश के क्लास 3 के पेंशनरों के लिए 30% और क्लास 1 व 2 के लिए 15% डीए की अधिसूचना जारी करने की घोषणा की है। शिमला में पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है और सरकार अपनी वित्तीय

0: अनुशासन के कारण डीए देने में सक्षम हो रही है।
1: मैंने ये फैसला किया है क्लास सी के जो पेंशनर हैं 1/16 के बाद 31/1/2022 तक के, उनको 30% एरियर और क्लास 1 क्लास 2 के 15% की एरियर की नोटिफिकेशन आज ही कर दी जाएगी। प्रदेश अपनी वित्तीय स्थिति से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, मुश्किल दौर गुजर चुका है, अब धीरे धीरे हम अच्छे दौर की ओर आ रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग इसमें साथ दें, सहयोग करें, धीरे धीरे सबकी पेंशन एरियर डीए सबको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कोई मेडिकल रिवर्समेंट में कोई पैसे की कमी नहीं है। ये ठीक है कि आरडीजी कटने के बाद कम्यूटेशन लीव इनकैशमेंट और एरियर में जो थोड़ा कमी आई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित हो रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को योजना की शुरुआत की थी और देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात मिली है।
2: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों के साथ किए गए हर वायदे को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर रही है और प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया जा रहा है। उन्होंने सिरमौर जिले में रेणुका क्षेत्र के मायना में एक कार्यक्रम में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वायदा पूरा किया है। अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य परिवहन निगम के लगभग 11,000 कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित अनेक मंत्री भी मौजूद रहे। हिम ई पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम पोर्टल जारी करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला के निकट डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल लोक प्रशासनिक संस्थान में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बैठकों की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इससे बैठकों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का 90% क्षेत्र ग्रामीण इलाके में आता है और गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28 से 30 सितंबर तक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन के हिमाचल संयोजक नरेंद्र शर्मा ने शिमला में बताया कि इस दौरान सभी बैंक अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मी मुख्य रूप से 5-डे वीक लागू करने और PLI योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि हड़ताल के दौरान प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत सिरमौर जिले में नाहन शहर के वार्ड नंबर 5 में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जिसमें आधुनिक तरीके से पानी की सप्लाई पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से नाहन शहर के 3 प्रमुख स्टोरेज टैंकों का जीर्णोद्धार कार्य भी किया जा रहा है। राजीव कुमार ने बताया कि योजना के तहत चल रहे इस कार्य को मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
3: हमारे 3 टैंक थे, यहाँ वर्किंग स्पेस बहुत मिनिमम थी, में काफी लीकेज है, टैंकों को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसके साथ जो नई पाइपलाइन है वो भी बिछने जा रही है। ये अमृत के माध्यम से जो हमें पैसे मिले थे नॉन वाटर सप्लाई के, इसके तहत हम एक वार्ड को मॉडर्नाइज करेंगे। इस वार्ड को हम IoT के, अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ेंगे। पायलट

0: बेसिस पे होगा। अगर हमें वहां सक्सेस मिलती है बाकी वार्ड्स में भी हम इसको लेके जाए।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतन सीमा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय भविष्य निधि के अपर आयुक्त और पंजाब व हिमाचल के प्रभारी राजीव बिष्ट ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि संगठन ने वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है, जो 17 सितंबर से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में 96,000 से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राजीव बिष्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 8,664 अंशदायी प्रतिष्ठानों के कुल 3,36,759 सदस्य हैं। इनमें से लगभग 96,000 सदस्य वर्तमान में 15,000 रुपये मासिक वेतन सीमा पर अंशदान कर रहे हैं, जिन्हें नई सीमा बढ़ने से सीधा लाभ मिलेगा। बिष्ट ने बताया कि वेतन सीमा बढ़ने से अब अधिक संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे।
2: इसलिए जरूरी बनता है कि सब जो पीएफ के लिए मेंबर के बनने के लिए रहे हैं वो तुरंत पीएफ के मेंबर बने, और 17 तारीख से जब उनकी सितंबर की सैलरी रिलीज हो वो उस समय उनका पीएफ की मेंबरशिप के साथ साथ पीएफ मेंबर कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। सरकार द्वारा एक एम्प्लॉई एनरोलमेंट कैंपेन भी चल रही है, जिसके तहत स्पेशल छूट दी गई है कि ऐसे जो भी एम्प्लॉई हैं जो कि किसी भी कारणवश उनको उनके नियोक्ता द्वारा पीएफ का लाभ नहीं दिया गया था, एक तरह से वारंटी डिस्कोर के चलते मिनिमम पेनल्टी के साथ केवल इंटरेस्ट देके वो उनको भी उस डेट से मेंबर बना सकते हैं। मात्र 100 रुपए का डैमेज लग के वो उनको मेंबरशिप एक्सटेंड कर सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर किशाऊ बांध परियोजना के समझौते के जरिए हिमाचल के संसाधनों को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किशाऊ बांध के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया और बिना किसी शर्त के MOU साइन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड की तर्ज पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे हिमाचल को करोड़ों का नुकसान हुआ है।
3: जयराम ठाकुर जी ने जो समझौता किया उस समझौते को मानने से जब हमारी सरकार आई हमने मना कर दिया, और ये समझौता 4 बैठके तो मेरे साथ होगी, आपको 12% बिजली फ्री रॉयल्टी देंगे, हमने कहा ये भी नहीं हम मानते। और अमित शाह जी के पास तो मैं सामने था ना, मैंने वो अपनी बात अड़िग से रखी, हिमाचल के साथ जो समझौता किया और हिमाचल के तकरीबन ये जो 412 मेगावाट है इसमें 6-7 हजार करोड़ रुपया बिजली बनाने का आएगा, और बिजली बनाने के बाद इससे जो 1200 करोड़ रुपया बिजली का हमको पैसा मिलना शुरू होता तो 600 करोड़, लेकिन ये 5 साल बाद बनकर तैयार होगी तो 1200 से 1500 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलेगा। जयराम जी है चाहे और कोई राम जी है, सब झूठ बोल रहे हैं।
1: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2029 तक नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए प्रत्येक देशवासी को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। पंजाब के आनंदपुर साहिब और गढ़शंकर में आयोजित नशा विरोधी यात्राओं में शामिल होने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई की तैयारी है और इसे जन आंदोलन का रूप देकर ही सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के संकल्प से जुड़कर नशे के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का आह्वान किया। इस बीच जयराम ठाकुर ने 16वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं के लिए 3744 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंचायतीराज मंत्रालय का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन सितंबर की 24 तारीख तक भी ना मिलने के विरोध में कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा ने बताया कि निगम के 1000 नियमित, 70 डेली वेज और 500 आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने इसके लिए निगम प्रबंधन व पर्यटन निगम के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया है और कर्मचारियों का वेतन जल्द जारी करने की मांग की है।
4: हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म का कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। केवल मात्र 1500 कर्मचारी, जिसमें से 1000 रेगुलर और 500 आउटसोर्स पे लगे कर्मचारी, जिनको आज 24 तारीख हो गई है तो 1 महीना 24 दिन बीत जाने के बाद भी उनको आज उनकी सैलरी उनके अकाउंट में नहीं पड़ी है। टूरिज्म बचाओ बाली बघाओ, अगर प्रदेश के टूरिज्म को बचाना है तो ऐसे चेयरमैन को तत्काल

0: प्रभाव से हटाना होगा।
1: लाहौल स्पीति जिले में घेपन ग्लेशियर झील के बढ़ते जलस्तर व संभावित जोखिम को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने 14 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर घेपन झील में स्थिति का जायजा लिया।
2: घेपन ग्लेशियर झील के बढ़ते जलस्तर और संभावित जोखिम को लेकर लाहौल स्पीति प्रशासन सतर्क है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बुधवार को करीब 14 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई कर स्वयं घेपन झील पहुंचकर।
3: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम विज्ञान भारती रिले किया जाएगा।
5: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
6: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
5: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
6: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंट वार्ता।
5: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
6: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंट वार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
5: स्वच्छ और स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक गांगेय डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंट वार्ता।
6: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
5: विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता दी है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।

0: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
1: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
2: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स। इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज इन डिफेंस, दे कैन बी यूज इन ड्रोन्स। लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं, मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहे हैं।
1: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
2: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स on a large scale. Designing was already done in India. In fact, most semiconductor chips design is done in by our colleagues. But actual manufacturing capability is being developed now by involving industry and also government funding for national semiconductor mission. Critical minerals ek naya initiative hai, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी काफी सारे हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसे है ना कि एक होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइंस इज वन टाइप ऑफ थिंग, सेकंड इज रिसाइकलिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, बैटरीज होती है, बैटरीज में लिथियम होता है, उसका लिथियम एक बार बैटरी डाई हो गई तो कैसे एक्सट्रैक्ट करें, वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए। इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ होस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जिसमें 1,00,000 crore रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 years, एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crore, एंड दिस इज यूज बाय सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स टू गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी और अ डीप टेक कंपनी। डीप टेक कंपनी ये होती है कि साइंस के प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्केलिंग अप करते हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 से ऊपर जाने के लिए ये फंडिंग है, खाली इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है, और ये 50% ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
1: जी। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
2: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो, मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन रिसाइकलिंग, यू यूज सोलर एनर्जी टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग हाइड्रोजन टू जनरेट मिथेनॉल। क्लीन एनर्जी, एक आपने सुना होगा गवर्नमेंट में अभी न्यूक्लियर पॉलिसी रिलैक्स कर दी है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, इफ यू लुक एट इट, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनर्जीज, और इसमें अगर माइक्रो साइज रिएक्टर सेट कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा। दूसरा डेवलपमेंट है फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है। बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है जो सोलार हो वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है। हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव, सी जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज।
1: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
2: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस, नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर। दूसरी चीज है कि हार्ड वर्क के सिवा कुछ नहीं होता है। अगर आपको बड़ा कुछ अकम्प्लिश करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है, एक है लोगों के साथ काम करो सेल्फलेसली, और दूसरा है हार्ड वर्क करना चाहिए।
0: देश में एक राष्ट्र एक समय को लागू किया जा रहा है, इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत। भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम,
3: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
4: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, सो CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है। तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है। ये कार्य हम कर रहे हैं जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की जैसे कि इसरो है उसको नैनो सेकंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं। अब ये जो अधिसूचना है इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है इसका एक रेफरेंस सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था। कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है जो वो समय को रखता है उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से जैसे इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा। उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को, आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हों। अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे। अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं ज्यादातर की, जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे। तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफ कोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स है, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है।
0: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
5: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6

0: सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डेल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान। लेकिन ये केवल अतीत की धूल नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ स्थित ऐतिहासिक बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान BSIP में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन की प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
1: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है।
2: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल सहानी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पोलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज, स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्ट्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते हैं। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरनमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
1: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
2: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडाइवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं, इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था, वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पॉलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट एनवायरनमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियोंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।

0: विज्ञान समाचार।
1: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय विज्ञानियों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के विज्ञानी भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉडराइस पोलिना समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
0: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
1: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा नदियों की हो, तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी, लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंगेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
2: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है, और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है, जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं, वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी। और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज़्यादा मिलेगा। और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
3: जी,
2: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए, तो इस पर विशेष संरक्षण का

0: भर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2220 डॉल्फिन हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 के आसपास डॉल्फिन हैं। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक न ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान न ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है। इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं, गंगा के हरेक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है। आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
1: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
2: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
1: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।
2: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से एशियाई खेल 2026 की डेली हाइलाइट्स रिले की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं लय विन्यासम। इसमें पहले सुनिए विद्वान।
1: कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज होते हैं और कुछ मुकाबले किसी खेल की पहचान बन जाते हैं। आईची नागोया के एशियन गेम्स में आज भारत के लिए ऐसा ही एक दिन रहा। कहीं मैट पर दांव पेस थे, कहीं शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था। और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया। तो आईची नागोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर। कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका। महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म। सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। शूटिंग में आया एक और पदक। आशीष चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन। ज्योश्ना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत सिंह और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए पक्के। शुरुआत करते हैं कबड्डी से। आज मैट पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर। कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में।
2: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स। द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट। इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझो। इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
1: निशाने लगाने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना। शूटिंग रेंज में आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
3: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजिशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशी चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई। फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवें स्थान पर रहीं और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गईं।
1: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
2: इट वॉज अ 3 मेडल डे फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद 2 सिल्वर्स एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वॉज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 hours 11 minutes and 37 seconds। बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय 21 seconds। लेटर इन द डे तेजिंदर पाल सिंह तूर एडेड अनदर एशियन गेम medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters.

0: clocking 53.21 seconds, while Kiran Pehel missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished 5th in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening attempt. In the women's 1500 meters, Paril Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing 4th in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished 6th. India also set up several possibilities for the days ahead. Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing 2nd in a semi-final in 20.81 seconds, while Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day 1 on the top of the standings with 4,338 points after 5 events, keeping himself firmly in contention as the remaining 5 disciplines take place on Sunday.
1: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
2: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनीष सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
1: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर, एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
3: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथ ही नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25वें पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग 6ठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल्स कुमकुम मोहद को 10वां, कीर्ति को 20वां तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा, हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वेनम 13वें और प्रतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रही। तो वहीं मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दें कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
1: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
2: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने 2 क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
1: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
0: A day of contrasting fortunes for India in the individual badminton competition at the Asian Games. Lakshya Sen's singles campaign came to an early end against former world champion Lokhin Yu. The Indian fought back after losing the opening game, but the Singaporean prevailed 21-12, 15-21, 21-14 in a contest that lasted over an hour. It meant an individual Asian Games medal continues to elude Lakshya, although he has already won a bronze from the men's team event at these games. Ayush Shetty began with a commanding 21-7, 21-7 victory over Kazakhstan Maksud before being stretched by the experienced Chao Tin Chen. Ayush pushed the third seed to three games but went down 16-21, 21-19, 17-21 in the pre-quarterfinals. The standout performance though came from 19-year-old Unnati Huda. After surviving a three-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching, Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19, 21-13 to book her place in the quarterfinals where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Qian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 to book her place in the women's singles quarterfinals.
1: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा, दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
3: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लिचुनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
1: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
0: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीज एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18 ईयर ओल्ड अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ टू गेम्स डाउन एंड देन टू मैच points down in the third, but the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning 4 consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of a young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Mohammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a sixth Asian Games medal. And there is history on offer on Sunday. India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity to change that with Olympic qualification also at stake.
1: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा, बता रहे हैं शाहिद आजमी।
2: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ। यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के अनुषा के सामने चीन के लिन शिंदोंग की चुनौती थी। लिन शिंदोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुषा को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुषा भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुषा की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
1: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही हैं एरिना का हाल।
0: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16.

0: 16 that set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishta, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanupriya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल्स टैली का लेटेस्ट अपडेट।
0: With 2 gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
1: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेंस शॉर्टबोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना यूएई से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकाने यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार, तमिला रासन, यहास पलाक्ष, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरें रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता, भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, परवीन 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी। और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन, इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।
2: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रात्रि के 10:20 होने को हैं।

आइए सबसे पहले सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में साजन फिल्म का ये गीत। फैज़ अनवर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

दामिनी फिल्म का गीत अब आपको सुनाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का।

0: ये आकाशवाणी है। आज रात के राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया द्वारा तविल लय विन्यासम।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल

0: लिए उन्हें डोलू कला सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। वर्तमान में वे श्री लक्ष्मी नरसिम्ह स्वामी मंदिर यादागिरी गुट्टा में डोलू कलाकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें डीडी यादगिरी पर प्रसारित नाद स्वरम कार्यक्रमों में तवल पर संगति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश भर में अनेक संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपनी निरंतर साधना, समर्पण और गहन अनुभव के साथ श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया पारंपरिक भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ नाद स्वरम पर संगत करने वाले कलाकार हैं श्री लोडगु वासु।
1: श्री वी चिन्नवेंकट सुब्बैया इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद। हिज म्यूजिकल जर्नी बिगैन इन द ईयर 1990 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फर्स्ट गुरु श्री वी एन लक्ष्मी नारायणन। लेटर ही रिसीव्ड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फ्रम श्री येल्लूर श्रीनिवासुलु एंड श्री तिरुक्कड़यूर टीजी बाबू। इन द ईयर 2018 he was honored with the eminent citizen award of Telangana state, and in 2019 he was conferred the title of Dolu Kala Samrat for his tavil playing in the field of Carnatic classical music. Currently he is serving as a Dolu artist at the Lakshmi Narasimha Swami temple in Yadadri. He has had the privilege of providing tavil accompaniment for the Nadaswaram programs broadcast on DD Yadagiri. He has participated in numerous music and cultural programs across the country. Through his continuous practice, dedication and profound experience, Sri V. Chinnavenkata Subbaiya remains constantly committed to preserving and promoting the rich cultural heritage of traditional Indian music. In tonight's program, the artist accompanying on Nadaswaram is Sri Lodugu Vasu.
0: आइए अब सुनते हैं श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया द्वारा तविल लय विन्यासम, जो चतुरश्र जाति त्रिपुट ताल में निबद्ध है।
1: लेट अस नाउ लिसन टू द तविल लय विन्यासम बाय श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया, सेट टू चतुरश्र जाति त्रिपुट तालम।

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रसारित श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बया के तविल लय विन्यासम का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नाद स्वरम पर आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे श्री लोडुगु वासु। यह संगीत कार्यक्रम राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the Tavil Lai Vinyasam by Sri V. Chinnavenkata Subbaya in the broadcast of National Program of Music. He was supported on Nadaswaram by Sri Lodugu Vasu. This concert was recorded in the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन एक

0: तथा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish